0: जो लोग इनसे पहले थे वो भी बहुत सी तदबीरें करते रहे हैं, सो तदबीर तो सब अल्लाह ही की कारगर होती है। हर मुतनफ्फिस जो कुछ कर रहा है वो उसे जानता है, और काफिर जल्द मालूम कर लेंगे कि आखिरत में अंजाम नेक किसके लिए है।
1: ओए!

वो उसको घूंट घूंट पिएगा और गले से नहीं उतार सकेगा, और हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी मगर वो मरने में नहीं आएगा, और उसके पीछे सख्त अजाब होगा।

0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: अर्रहमान,
0: वो जो निहायत मेहरबान है।
1: अल्लमल कुरआन,
0: उसी ने कुरान की तालीम फरमाई।
1: खलकल इंसान,
0: उसी ने इंसान को पैदा किया।
1: अल्लमहुल बयान,
0: उसी ने उसको बोलना सिखाया।
1: अश्शम्सु वल कमर बिहुस्बान,
0: सूरज और चांद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं।
1: والنجم والشجر يسجدان,
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں।

0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर गिलाफ होती हैं। और अनाज जिसके साथ भुस होता है और खुशबूदार फूल।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: शान।
1: आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back. Hit music. On your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: This is FM 101.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
4: FinTech,
3: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: दिस इज FM 101.

0: This is FM 101.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

रुल गई है साढ़े प्यार च मारे बारे पांच बज गए वे मैनू की होया।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।
2: And now you are tuned into
3: FM 101।
4: Coming up next, 101 News Headlines.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइव बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
3: This is FM 101.
6: I love FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: It's Kaz on the beat.

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, जहां स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: I love
1: FM 101। सुर संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
4: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines. Pakistan. This is FM 101. This is FM 101.
7: I love FM 101.
8: Surur Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है. पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स. एआई, सास,
0: फिनटेक,
2: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है. टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट. प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026. रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर.
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया. शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया.

Thank you.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Welcome to.
1: This is FM 101.
2: I love FM 101.
3: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: मिट्टी, विच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

कितने रोया था मैं तेरी खातिर। कितना रोया था मैं तेरी खातिर, अब जो सोचूं तो हंसी आती।

0: सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीरे आज़म ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और वफाकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहबाज शरीफ ने आलमी उमूर में अक़वामे मुत्तहिदा के मरकजी किरदार के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के बिजली की तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर की फाइनेंसिंग मंजूरी दी है। पाकिस्तान और ने साइबर जराइम और ऑनलाइन फ्रॉड से निमटने के लिए तआवुन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर और राजौरी के अजला में काबिज फौज की बड़े पैमाने पर महासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस स्टेडियम इंगलवुड में आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में कल स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: देखे तो जो इधर

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ये दुनिया झूठी लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: FM 101.
2: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
3: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
4: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
5: FinTech,
4: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
6: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास,
4: फिनटेक,
3: हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
5: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक। One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइब नुकसान

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across two tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
1: This is FM 101.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: I love FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
4: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
7: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
8: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: זה לא.
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Meerpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

जान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: छोटे खाना था उसके लिए 121 के लिए। तो आप ये देखे कि पूर्ण ऑफ प्लेयर
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

दवाखाना हकीम सुलेमान की जानिब से तिब्बी रहनुमाई का प्रोग्राम पेश किया जाता है, हकीम सुलेमान के तिब्बी मशवरे। अपने मेज़बान आरिफ ज़ेबाई का सलाम कबूल कीजिए। सामीन हज़्ब साबिक, आज भी हमारे साथ मुल्क के नामवर तबीब जनाब प्रोफेसर हकीम सुलेमान साहब तशरीफ रखते हैं, जो आला तिब्बी खिदमात की बिना पर गोल्ड मेडल्स और अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

चल बुलिया उते चलिए जिथे होवन सारे अन्ने ना कोई साडी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पाकिस्तान भर में इस आवाज़ को जहाँ जहाँ सुना जा रहा है, सभी सुनने वालों को, सभी सहने वालों को, रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से, मन की सच्चाइयों से खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, एंड हैव अ ब्यूटीफुल नाइट टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी सुनने वाले, हमारे ना सुनने वाले भी खैरियत से होंगे। अगर आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के संग संग हैं, यानी कि शब के इस पहर में आप हमारे हम सफ़र हैं, इस सफ़र में हमारे साथ हैं, आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। और जनाब 101 इंटरनेशनल की इस ट्रांसमिशन में आप हम रहते हैं आपसे लेके ठीक 12 बजे तक, अपने दिल की ढेरों ढेर बातें लेके हम हाजिर होते हैं, वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं, वो बातें जो हम आपसे कहना चाहते हैं, जो हमारे दिल में धक धक धक छन छन छन चलती रहती हैं। और सारा हफ्ता इस दिन का इंतज़ार होता है कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू होगी, आपसे बात करेंगे, और दिल वालों के इस बज़ में आप हमारे साथ होंगे, अपने दिल की बातें लेके हम हाजिर होते हैं और आप भी अपने दिल की बातें हमारे साथ करते हैं। सो जनाब, दिल वालों की बज़ सज चुकी हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, अपने अगर आप कॉल करना चाहते हैं, यानी कि आप लाइव कॉल में शामिल होना चाहते हैं, तो 04-2111-0101 हमारे रबते का नंबर है। पाकिस्तान भर से जहाँ भी आप इस वक्त सुन रहे हैं, अपनी गाड़ियों में, घरों में, जहाँ कहीं भी हमें सुना जा रहा है, 04-2111-0101 इज़ द डायलिंग नंबर। और अगर आप सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फिर आपको सिर्फ करना यह है कि रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं, एफएम 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। सो जनाब, हमेशा की तरह जैसे मैं कहता हूँ, ये दिल वालों की बज़्म है, और दिल वालों की बज़्म जब सज जाती है तो दिल वाले भी यहाँ होते हैं। और ये दिल वालों की बज़्म है क्या? ये बज़्म उन लोगों के लिए है जो दिल की सच्चाई पर यकीन रखते हैं, जो धड़कनों की ज़ुबान समझते हैं, और जो वफा को सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि इबादत समझते हैं। यहाँ ना झूठ की गुंजाइश होती है, ना धोखे की गुज़र, यहाँ आँखों में सच बोलने का हुनर होता है, और लबों पे वो बातें जो सीधा दिल में उतर जाती हैं। सो जनाब, दिल वालों के बज़ में आप रहेंगे, हम रहेंगे, और हम आपके साथ रहेंगे शब के 12 बजे तक। 04-2111-0101 हमारे रबते का नंबर है, और आप पाकिस्तान भर में जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, आप हमारे साथ बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों की कॉल्स को हम शामिल करेंगे। सो जनाब, शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं, हाल अहवाल थोड़ा सा अपना बताइए, ज़िंदगानी कैसे गुजरी है, इस हवाले से भी ज़रूर हमें बताइएगा। और कैसी गुजारी है वैसे, हैं आप वीडियो बना रहे हैं? अच्छा, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ज़िंदगी कैसे गुजरी है बताइए, कि फ़ुटबॉल का जो क्रेज़ है आपको है कि नहीं है, कि आप लोग बस मेरी तरह कभी मैच देख लिया, कभी ना देखा, जो बड़ा कोई पीक का मैच हुआ तो वो देख लिया, अदरवाइज़ ठीक है यार, चल रहा गुजारा जो भी है। वैसे फुटबॉल मैच हो, इतना बड़ा इवेंट हो और कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो इजिप्ट के साथ जो हुआ आप सब जानते हैं, इस हवाले से दिल बड़ा दुखी है, बड़ा अफसरदा है, एक जीता हुआ मैच जो कि इजिप्ट के हाथों से निकल गया। बोल आई, मेरी बड़ी विश थी कि इजिप्ट जीता, लेकिन क्या करें, इट्स अ गेम, हम कुछ कह नहीं सकते। बट ये है कि एक बहुत थ्रिलिंग किस्म का मैच, बट वेरी नाइस मैच है, एक्सीलेंट किस्म का मैच था, जो कि इजिप्ट हारना पड़ा, उसको आउट होना पड़ा, बट एट द एंड इट्स अ फुटबॉल, इट्स अ गेम, गेम में कुछ भी हो सकता है। सो जनाब, आज का जो टॉपिक थोड़ा मैं आपको शुरू में ही बताता चलूँ कि हम एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो अगर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए ना, तो ना सिर्फ हमारे दिल को सुकून मिलता है, अब यकीन जाने, बल्कि हमारी ज़िंदगी में बरकत, खुशी और अल्लाह ताला की रज़ा भी शामिल हो जाती है। और हमारा एक अलमिया यह है कि हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, हम बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं, हम बहुत ज़्यादा हमेशा कंप्लेनेंट रहते हैं, लोगों से कंप्लेन कर रहे होते हैं, अपनों से कंप्लेन कर रहे होते हैं, हम अपनी इसलाह नहीं करते लेकिन लोगों से बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं। ज़िंदगी में शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है, इस हवाले से आप लोगों ने मुझे आज बताने कि ज़िंदगी में शुक्रगुजारी क्यों ज़रूरी है, एक बड़ा ही अहम आज का मौजू है कि हम मुंह से तो कह देते हैं, हमारे लब हिल जाते हैं, ज़ुबान से भी शुक्र अदा करना, बड़ा शुक्र करते हैं जी, बड़ा शुक्र है जी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शुक्र है, पर एक्चुअली क्या हम उस शुक्र को अपने दिल से अदा कर रहे होते हैं,
और अगर वो शुक्र अदा हम कर रहे होते हैं तो वो हमें हमें क्यों ऐसा लगता है माशरे में कि हम एक्चुअली शुक्र अदा नहीं कर रहे, हम एक रस्म अदा कर रहे हैं, हम रस्मन लफ्ज अदा कर रहे हैं, वो लफ्ज़ जो हमारे लब से निकल रहे हैं, हमारी ज़ुबान से निकल, लेकिन अंदर से वो आवाज़ निकल आवाज़ नहीं निकली शुक्रगुजारी की। जैसे कहते हैं थैंकफुल होना, शुक्रगुजार होना, रब का शुक्रगुजार होना, उसकी नेमतों का शुक्रगुजार होना, उसकी करम नवाजियों का शुक्रगुजार होना, उसकी इनायात का शुक्रगुजार होना, उसकी हम पे जो नवाजिशात हैं उसका शुक्रगुजार होना, उसकी हम पे जो लम्हा लम्हा हर पल हर सांस के साथ जो उसका करम है उसका शुक्रगुजार होना हम लब से कह देते हैं, तो क्या एक्चुअली हम दिल से शुक्रगुजारी का हमारे रवैया है? अगर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आता? अगर है तो फिर हम कंप्लेन क्यों करते हैं, हम शिकायत क्यों करते हैं, हम गिला क्यों करते हैं, हम हर वक्त सरापा एहतजाज क्यों रहते हैं, हम नाराज़ क्यों रहते हैं, हम एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने पे क्यों लगे हुए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे क्यों लगे हुए हैं, एक दूसरे को ऊपर ऐसे कमेंट करने में हर वक्त लगे हैं कि बस हमने उसको फ़र्ज समझ लिया है। अगर किसी ने कोई बात कह दी है, किसी ने कोई पोस्ट लगा दी है, किसी ने किसी के बारे में कुछ कह दिया, या किसी ने कुछ अपनी राय का इजहार कर दिया, या किसी ने कोई अपने काम के बारे में बता दिया, तो हम उस पर ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं कि हम अपने अंदर का जो एक बोझ होता है, नफ़रत होती है, कीना, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। फिर हम कहते हैं यार हम तो बड़ी शुक्रगुजारी में हैं, बट वेयर इज़ दैट शुक्रगुजारी? वो शुक्रगुजारी कब होती है? जब हम लोगों को पनपते, उनको परवान चढ़ते हुए देखते हैं, या किसी के किसी काम को हम सराहने की बजाय उस पर तनकीद निकालना, हर वक्त तनकीद, हर वक्त तनकीद, वाई? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, मुझे आपसे भी जानना है। 04221100101 हमारे रबते का नंबर है जिस पर आप लोग हमारे साथ निभा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग FM 101 के ऑफिशियल पेज पे हमारे साथ रह सकते हैं। मुझे फरहान खान कहते हैं, आपको क्या कहते हैं? 04221100101 इज़ अ डार्लिंग नंबर जिस पे आप लोग मेरे साथ रहेंगे और मेरा आपका ये खूबसूरत सा साथ रहेगा। लेकिन ये आपने ज़रूर आज के मौजू के हवाले से कोशिश करें कि एक्चुअली हम क्या सच में शुक्रगुजारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या ज़िंदगी में हमारी जो शुक्रगुजारी या थैंकफुल होना, लोगों का थैंकफुल होना, मतलब किसी ने अगर कोई हमारे साथ कुछ अच्छा कर दिया है या हमारे लिए कुछ अच्छा कर दिया तो उसके लिए थैंकफुल कैसे होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जनाब आप भी हमारे साथ शामिल रहें, हम भी आपके साथ रहेंगे। एक दोस्त हमारे साथ होंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे कुछ लम्हों में, ऑल द वे जनाब अभी वो अपने ट्रैवल पे हैं, एक दूसरे शहर से इस शहर में दाखिल हो चुके हैं। आखिरी इतला के मुताबिक वो रावी के पुल से में दाखिल हो चुके थे, यानी कि लाहौर रावी में दाखिल हो चुके थे। अब देखें हम तक कब पहुँचते हैं। एक बहुत ही दिलकश सा ट्रैक रात के इस पहर में, रात की तन्हाइयों में आपकी समातों की नज़र, बिल्कुल खामोशी से, बल्कि दिल की खामोशी।

0: वल जनाब, वो शाहकार आ चुका है जिसका था हमें इंतज़ार, और वो शाहकार जो अभी कुछ लम्हों में जो हमसे थोड़ा सा दूर था लेकिन अब हमारे करीब पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द हम उन्हें माइक्रोफोन पे भी बुला लेंगे। सो जनाब, बहुत खूबसूरत हमारे दोस्त ये जो राइटर हैं, ड्रामा राइटर हैं, और इसके साथ साथ बड़ा खूबसूरत बोलते भी हैं। मज़े की बात है, जो राइटर होते हैं ना, जो जो लिखने वाला होता ना, वो बोलने वाला भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला ने लिखने का फ़न दिया होता है, तो वो बोलता भी अच्छा है। तो ये हमारे दोस्त जब भी कॉल करते हैं बड़े अच्छे अंदाज से आते हैं और बड़ा खूबसूरत बोलते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हो रहा है, उनको लेते हैं, फिर उसके बाद एक ट्रैक मैंने लाइनअप किया उसको हम चलाएँगे। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम यासिर भाई, इस वक्त हमें सुन रहे हैं ऑल द वे यूके से। यासिर भाई, वेलकम टू रेडियो पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कौन है हमारे साथ? जी सुफियान साहब, जी बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे
1: जी? सर आपका शो बहुत अच्छा, माशाल्लाह
0: सर, थैंक यू,
1: और शुक्रगुजार में सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आपको बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा बहुत अच्छा शो है,
0: चलें जबरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जला हाफिज़।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की पायदार इक्तसादी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार से अब तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान और खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर दीगर कार्रवाइयों के दौरान 79 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। महकमा मौसमियात ने कल से पीर तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: बेहतरीन जबरदस्त बट साहब मेरे सामने बैठे ने हाल और अच्छा हो गया हालो बेहाल हो गया सर सवेरे पता नहीं की होंगे मेरे नाल मुझे नहीं था
1: वो आगे जिनका हमें इंतजार था जिनके सुनने के लिए ये दिल बेकरार था
2: बस
0: और
2: फिर मैंने आपसे पूछना है कि आप
0: अच्छा सर एक ट्रैक है और ये ट्रैक बड़ा जबरदस्त है ये मुझे ना रिक्वेस्ट की थी कॉलर ने जिन्होंने दो दफा और वो कह रहे थे कि जी दिलावेज आजकल उनकी बड़ा फेवरेट ट्रैक हुआ है तो सो तमाम सुनने वाले के नाम ये खूबसूरत सा ट्रैक मुझे कहते हैं फरहान खान आप सुने हैं द लेट नाइट शो विद फरहान खान

0: وعلیکم السلام.
1: ویلکم ہے عثمان بٹ صاحب. اور بٹو جیو بٹو.
2: بہت شکریہ جی. تھینک یو تھینک یو. بہت شکریہ.
1: ایکچولی آئی ایم آلسو بٹ.
2: اوہ گڈ گڈ.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر روٹی تہاڈے لئی کھان اج بٹ.
2: کوئی ہمسا نہیں, وہ کوئی ہمسا ہو تو پھر نام بھی ہمسا رکھے
1: ہے نا. اور کیا
0: روٹی پھر بٹا دی بٹا دے کاری ہوئے گی.
1: نہیں فرانسا بڑی اچھی روٹی کھوانے نے, ٹینشن کوئی نہیں.
0: چلو ٹھیک
1: ہے. ویلکم ہے جی. سیالکوٹ کے آرجی ہیں آپ.
2: بہت شکریہ.
1: بڑی خوبصورت آپ نے رونق لگائی ہوئی ہے ساتھ فرحان کے.
2: تھینک یو.
1: اور فرحان وہ بابا جی آئے تھے یار, ان کی محبت ہے, ان کے غصے میں بھی ان کی محبت تھی, فکر تھی. اور کیا آپ نے بہت اچھا کیا ہے, بلانا چاہیے
0: ہے نا. کتنے پیارے میٹھے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لوگ کڑوا کیوں سمجھتے ہیں بزرگوں کو یار, مجھے سمجھ نہیں آتے. ابھی تو ابھی تو ان سے انہوں نے پوچھا ہی کچھ نہیں ہے, انہوں نے غصہ چڑھوا دیا ہے. یہ ان سے
2: یار میں نے صرف کھیتوں کھلیانوں سے پہلے ماشاء اللہ ان کے 14-15 بچے تھے.
0: نہیں چلو بچیاں دیتے نا جاؤ نا, جڑی گل کرن
2: نہیں
0: وہ کری دی نا.
2: نہیں میں نے جب اپ آف ایئر تھا نا,
1: اپ دکھتی رات پہ آتا نا رکھیں, بعض وقت بندے نہیں پسند ہوتا کچھ اس کی.
2: نہیں نہیں انیلا نام ہے ان کا. انیلا ایسا نہیں ہے. انیلا جب میں آف ایئر تھا نا, آف ایئر تو میں نے ان کو پوچھا کہ بابا جی کا بیاہ ہوا ہے تو میں نے ایسے ہی کہا تھا, کہتے ہیں آ تو میرے 14 بچے نے. تو میں نے تو پھر ظاہر ہے ان کی یہ کوالٹی ظاہر ہے لے کے آنی تھی.
0: نہیں دیکھیں آپ براڈ کاسٹر ہیں, آپ کو تھوڑا تھوڑا سے
2: براڈ کاسٹر یہی بھی آئے
0: کسی کو آن ایئر آف ایئر میں فرق, آن ایئر میں اور آف ایئر میں باتوں میں فرق ہوتا ہے نا.
2: جب آنے لگا سیالکوٹ سے تو انہوں نے مجھے کہا کھانا کیا کھائیں گے, سر پوچھتے ہیں نا مطلب یہ. تو میں نے کہا یار ظاہر ہے میں کیا بتاؤں کہ میں کیا کھانا کھاؤں گا,
1: مطلب آپ
0: کو ہاں
2: تو وہ نا. پھر میں نے اب انہوں نے کہا جی عثمان صاحب 10 بجے تو روٹی مل جائے گی, 12 بج گئے تھے. ٹھیک ہے اس
1: کے لیے معذرت ہے نا, انہوں نے پروگرام بھی تو کرنا سی نا, اودے بعد کھل کھلا کے روٹی کھانی ہے تسیں.
2: نہیں اودے بعد وہ کہندے نے کہ 12 بجے تو بعد ایتھے روٹی نہیں لبدی.
0: باندھ دینا ہوٹل شوٹل سارے باندھ دینا 10 تے بعد. نہیں نہیں 10 تک نا ہوٹلنگ ٹائم نا, ویسے 11 تک ہے نا, سٹنگ نہیں ہے, کھلوتے ہی کھوانے دا. نہیں نہیں انیلا بہت شکریہ, آپ
1: بڑے مہمان نواز ہیں مجھے پتا ہے.
0: نہیں نہیں کھلاتے ہیں ان کو انشاءاللہ, دیکھیں سر
1: زبردستی اچھی رونق لگی ہوئی ہے. اب شعر و شاعری اور کسی چیز کا ٹائم نہیں رہا تو میں کیا ہوں جو.
0: ہاں کتنی کمال کی بات کی آپ نے,
1: مجھے پتا ہے آپ لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہے تھے اچھا انیلا بات بھول گئی
0: ہے, آج بھی بھول گئی ہیں مجھے لگتا ہے, آج بھی بھول گئی ہیں بات.
1: نہیں نہیں اب میں شاعری سنانے لگی تھی.
0: جی جی ضرور.
1: چار لائنیں سنا دیتی ہوں.
0: جی سنا دیں جی پلیز پلیز.
1: تم نظر سے نظر ملاتے تو, بات نہ کرتے مسکراتے تو, چاندنی رات سسکیاں بھرتی, تم ذرا اپنی چھت پہ آتے تو.
2: بہت اچھے بہت اچھے. کل 14ویں کی رات تھی, شب بھر رہا چرچا تیرا, کچھ نہیں کہا کہ چاند ہے, کچھ نہیں کہا چہرہ تیرا. بہت اچھے
0: جی.
2: فرحان وقت کتنا رہ گیا
0: سر؟ وقت رہ گیا تھوڑا ہی, وقت آپ کا تو تھوڑا ہی رہ گیا,
2: تھوڑا ہی رہ گیا
0: کیونکہ آپ کو نیند آ رہی ہے بہت زیادہ نا.
2: نہیں ویسے ٹائم ہو کیا ٹائم,
0: 11:52 ہو جاتا,
2: 52 منٹ.
0: بابا جی نے کتنی پیاری بات کی نا کہ پہلے وقتوں میں لوگ گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے ریڈیو سے.
2: آئے ہائے
0: یہ ریڈیو پاکستان
2: کیسی کیسے, مطلب یار خان اگر 40-50 سال پیچھے چلے جائیں, سوشل میڈیا نہیں ہے, سوشل میڈیا تو خیر کچھ ہی سال پہلے آیا.
0: اب سوشل میڈیا 15 سال پیچھے
2: نہیں, لیکن چلے ہم اس سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. جب پرانے کھوکھوں پہ ریڈیو پڑے ہوتے تھے اور لوگ وہاں پہ رک کے, اچھا جس کھوکھا پتہ نا کس کو کہتے ہیں, اگر نہیں پتا تو ان کو بتا دیں کہ کس کو کہتے ہیں. لکڑی کا وہ ڈھابا جس کے اندر پان چائے کچھ اس طرح کی دکانیں ہوتی تھیں, اچھا وہاں پہ خوبصورت یہ ہوتا تھا کہ وہاں پہ ریڈیو پڑا ہوتا تھا, اور جس جگہ پہ ریڈیو ہوتا تھا وہ 5-star کھوکھا ہوتا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور وہاں پہ لاریاں کھڑی ہوتی تھیں, وہاں پہ ٹانگے کھڑے ہوتے تھے, وہاں پہ रक्षे तो थे नहीं वहाँ पे, ठीक है, बसें होती थी,
0: टांगे
2: होते थे, और वो खड़े होते थे कि इस्तकान दे उते
0: लग्जरी सवारी होती थी,
2: इस्तकान ते रेडियो बजता है, ठीक है, इत्थे सवारी लभेगी। तो ये उस वक्त का मतलब रेडियो को माठी चीज तो नहीं है ना, मतलब ये तो एक मायार का नाम था। और फिर वहां पे प्रोग्राम सुने जाते थे, उस वक्त आरजे भी फरहान खान जैसे होते थे।
0: नहीं नहीं, उस वक्त बहुत खूबसूरत आवाजें होती थी रेडियो की।
2: अच्छा, बड़े बड़े सादा रेडियो था मतलब, ठीक है ना, और उस वक्त एफएम नहीं था, मीडियम वेव था, और उसमें प्रोग्राम बड़े अच्छे ड्रामे भी चलते थे।
0: जी जी, ठीक है, ड्रामे सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही है। और वक्त ये कहता है कि आपसे और बात करें,
2: वो वक्त ये कहता है, तो मुझे वो आपने पूछने आप पूछा था कि
0: हालात ये कहते हैं कि किनारा कर लूं,
2: सुनाइएगा
0: जरा। नहीं आप सुने, आप सुने हालात, क्योंकि आपकी मौज आई है ना आज, आप सुनाए।
2: इतनी भी मौज नहीं है। अनीला कह रही थी कि मतलब रोटी जड़ी है ना
0: चढ़ गई दिमाग पे।
2: हालात ये कहते हैं कि तुमसे किनारा कर ले, जरा ठहरा दिल, हम
0: इस्तखारा कर ले।
2: इस्तहारा ये कहता है कि किनारा कर ले,
0: मगर दिल ये कहता है कि
2: इस्तहारा दोबारा कर ले।
0: अरे अच्छा, वैसे जिंदगी में बट सब ऐसी कंडीशन आ जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं,
2: बहुत से फैसले पता होता है कि ये फैसला यही होना चाहिए, और लेकिन हम उसके ऊपर चाहते हैं कि दोबारा से।
0: हाँ अच्छा, बात सवाल ये होता है कि आप फैसला कोई कर लेते हैं, फिर उस पर आप सोच रहे होते हैं, और फिर बार बार सोच रहे होते हैं, या फिर कभी ये होता है कि आप कई लोगों के पास जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पास, कि जी मेरे लिए दुआ करें, मेरा ये मामला है, मेरे ये मसाइल हैं, ये इशू है, ये फैसला ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, मैं ये करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। अच्छा, फिर उस पर वो इस्तखारे वाली बात है ना, कई लोग इस्तखारा करते हैं, लेकिन इस्तखारे के हवाले से ये मैंने सुना पढ़ा है कि इस्तखारा जो है ना, वो अल्लाह ताला से एक मशवरा है, अल्लाह ताला से आप रहनुमाई चाहते हैं, तो जो फिर इस्तखारा में रहनुमाई मिलती है, फिर आपको
2: उसके ऊपर इत्तफाक करना है, फिर उसके ऊपर यकीन करना है।
0: जी, यकीन करना है, तो फिर वो कन्फ्यूजन
2: वही आखिरी बात कि दिल ये कहता है इस्तखारा दोबारा
0: कर लो, तो ये दोबारा नहीं होता। अच्छा, लेकिन बाज़ लोगों का मैंने देखा है कि वो इस्तखारा करते हैं तो उनको फौरन से चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हमें नज़र ही कुछ नहीं आता, ख्वाब नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों को मैंने पढ़ा है, वो इस्तखारे के बारे में ये कहते हैं, लिखा गया बुज़ुर्गों ने, कि इस्तखारा बेसिकली ये होता है कि जब आप करते हैं तो आपका जो काम जिसकी तरफ आप जाना होता है ना, उसकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका रुख हो जाता है, आपका रुझान उस तरफ हो जाता है, यानी कि जरूरी नहीं
2: आपकी तबीयत माइल हो जाती है,
0: माइल जरूरी नहीं कि आपने दुआ पढ़ी और दुआ के बाद आपको ख्वाब में कुछ रहनुमाई मिले, लेकिन आपकी तबीयत
2: माइल हो जाती है,
0: माइल हम तो माइल वाक करम है।
2: अच्छा जी फरहान, मेरा हाल, मुझे अब इजाजत लेनी चाहिए
0: आपको, उसके बाद आपने आप मुझे, मैं चाहता हूँ आप इजाजत लें और सियालकोट वापस चले जाएं। या भट्ट साहब भी हमारे साथ है, या साहब इधर आए एक मिनट, इधर आए या भट्ट साहब, जनाब उस्मान भट्ट साहब के बेटे हैं माशाल्लाह, इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय। या वेलकम, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह फाइन।
0: कैसा लगा आपको रेडियो पाकिस्तान एफएम वन? अच्छा लगा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका?
3: एक्सपीरियंस काफी प्लेजेंट था, काफी मजा आया।
0: इससे पहले कभी आपने एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान का विजिट किया?
3: सियालकोट में काफी दफा की है, लेकिन लाहौर टाइम फर्स्ट है।
0: दिस इज फर्स्ट टाइम?
3: यस।
0: सो यू एंजॉयड अ लॉट?
2: आप वैसे एक बात है, सियालकोट में और लाहौर में वैसे सिटी के हवाले से, मैं रेडियो की बात ही नहीं कर रहा, कितना फर्क देखते हैं आप?
3: सियालकोट चूंकि थोड़ा छोटा शहर है, तो उस टाइप की लाइक इधर का स्टूडियो रेडियो हर चीज ज्यादा एडवांस लेवल की है।
0: एक्चुअली है, हमारे इक्विपमेंट तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन जो कि बड़ा स्टेशन है तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस है। या थैंक यू सो मच, आप आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं आपको भी देखते रहता हूँ। या इज आप ओ लेवल्स में हो?
3: यस।
0: तो कैसी पढ़ाई जा रही है? अच्छी जा रही है, एग्जाम अच्छे हुए हैं? अच्छे ग्रेडिंग के हम तवक्को करेंगे, आपने मेहनत तो बहुत ज्यादा की है, बल्कि जिन जिन बच्चों ने मेहनत की अल्लाह उन सबको कामयाब करे, और आपको भी, आपके लिए बेस्ट विशेज हैं। और कुछ फ्यूचर प्लान है?
3: थोड़ा बहुत
0: बनाए हुए हैं। अच्छा, कंफ्यूज हो भी है ना, काफ़ी चीज़ें सोचते हो, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा, अच्छा होगा, बिकॉज वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराए नहीं।
2: और मुझे इरादे पे एक शेर याद आ गया।
0: जी जी जी,
2: कि इरादा बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, इरादा बांधता हूँ सोचता हूँ तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। जी लिसनर्स, आपको बताते चलें कि मैं हूँ उस्मान और मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। सियालकोट से मैं चला था फरहान की मोहब्बत में और फरहान ने यहाँ पे बांध के रख दिया। वैसे भी फरहान ने अपनी मोहब्बत में बांधा ही हुआ है। सो जी आज पहली दफ़ा इंटरनेशनल में प्रोग्राम करने का मौका मिला और ये भी फरहान आपकी मरहूने मेहनत है। रेडियो में मुझे लेके आने वाले भी फरहान हैं। ये गलती आपने एक दफ़ा पहले की थी, आज दूसरी दफ़ा दोबारा कर दी है। सो जी वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मैं यही कहूँगा कि रेडियो पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जिसने सबको इज्जत दी, नाम दिया, हमें भी चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें।
0: बहुत खूब, बहुत खूब सर, थैंक यू सो मच। और जनाब दैट वाज आरजे उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ थे। मैं भी चाहूँगा इजाज़त इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ के लिए जब हाथ उठाएँ। तो मेरा नाम फरहान खान है, मुझे मेरे पूरे FM की टीम को, पूरे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखिए। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में ढेरों आसानियाँ अता फरमाए और हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम खैर के काम कर सकें। मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलकश सी आवाज़ के साथ। एंड द ट्रैक आई एम गोना प्ले फॉर यू गाइस इज़ कॉल्ड प्यारा है अंधेरा, इज़ बाय तंजीला मुगल की आवाज़ के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। सो फरहान खान साइनिंग ऑफ, अल्लाह निगहबान एंड लव टू ऑल।

के लिए चार टॉपिक्स लेकर आया हूँ, एक नहीं चार चार चार चार आज जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बात होगी और बहुत सारी बातें आपके साथ होगी। इसके साथ साथ अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप नंबर डायल करेंगे 0511100101, और अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो जाएंगे अपने टेक्स्ट मैसेज के बॉक्स में, वहां जाके लिखेंगे FM अनुमन चैनल पाकिस्तान और अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना पैगाम, और उसको भेज देंगे 4471 के ऊपर।

हाँ जी, मौजूआत की बात कर रहा था जी कि मौजूआत आज होंगे और सबसे जो खास मौजू है ना, जिस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ, वो इसलिए करना चाहता हूँ, कभी मैं सोच रहा था कि जब मैं आ रहा था ना, मैं सोच रहा था कि आज किस हवाले से बात की जाए, तो फिर मुझे ख्याल आया कि आज ना बहुत पुरानी चीज़ एक जो है वो निकली है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपकी ज़िंदगी में आप कहीं कुछ ढूंढ रहे होते हैं या कुछ चीज़ आप देख रहे होते हैं, अगर आप अपना फेसबुक अभी स्क्रॉल कर रहे हैं तो कहीं आप बहुत दूर पीछे चले जाते हैं तो कोई तस्वीर ऐसी निकल आती है जो बहुत पुरानी होती है, तो बहुत सारी चीज़ों के साथ आपको लिंक करती है, बहुत सारी यादें आपको आ जाती हैं कि यार इस तस्वीर के वक्त में कैसा था, उस वक्त क्या था, मेरा स्टेटस क्या था, या उस वक्त मैं कहाँ था, मेरे साथ कौन था, किसने तस्वीर बनाई थी। कभी कभार घर में कुछ पुरानी चीज़ें आप इधर उधर कर रहे होते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ ऐसी निकल आती है, कोई किताब निकल आती है, कोई खत निकल आता है, कुछ हाँ कोई पेन निकल आता है, कोई सूखा हुआ फूल निकल आता है। तो आप थोड़ी देर के लिए साकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि हाय क्या वो भी कभी दिन थे। कितने प्यारे दिन थे। जब भी हम माजी को याद करते हैं ना, चाहे माजी बुरा ही क्यों ना हो या माजी कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हमें माजी अच्छा लगता है क्योंकि हम उसको गुजार चुके होते हैं। तो अगर हम सोचे ना, गहराई से सोचे, तो जिस चीज में हम जी रहे होते हैं, जो गुजर रहा होता है, अगर वो मुश्किल होना तो वो हमें सबसे ज्यादा दुनिया का मुश्किल तरीन लम्हा लग रहा होता है, क्योंकि उस दर्द को या उस तकलीफ को हम उस वक्त बर्दाश्त कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो गुजर जाता है तो हमें बड़ा अच्छा एहसास होता है, हमें बड़ा मजा भी आता है, क्योंकि दर्द के बाद ही सुकून या जो राहत है उसको महसूस करने की हिस्स आपके अंदर पैदा होती है। अगर आपने दर्द महसूस नहीं किया तो चाहे जितना मर्जी आपको सुकून मिल जाए, चाहे जितनी मर्जी आपको खुशी मिल जाए, अगर आपने दुख महसूस नहीं किया तो उस खुशी का मजा नहीं होता या उस खुशी को आप महसूस नहीं कर सकते या उस एहसास को आप एहसास कह नहीं सकते कि ये खुशी है। तो अगर आपने दुख देखा ही नहीं है तो आपको खुशी का क्या पता कि ये खुशी है। तो खुशी भी आपके लिए बड़ी नॉर्मल सी होगी, वैसे ही होगी जैसे कि एक नॉर्मल सा लम्हा है।

तो आज जनाब मैं अपनी कुछ पुरानी चीजें इधर उधर कर रहा था तो उसमें से एक बहुत ही पुरानी चीज निकली। उसको मैं बहुत संभाल के रखा करता था और मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज वही हुआ करती थी। जब कभी मैं कहीं जाया करता था, जब कभी कहीं अगर मैंने किसी कजन के घर जाना है या किसी खानदान में किसी घर जाना, तो अम्मा को स्पेशली मैं कह के जाया करता था कि अम्मा इसका बड़ा ख्याल रखना, आपने इसका बड़ा ध्यान रखना, ये ना हो कि छोटा उठा के ले जाए, ये ना हो कि कोई और कजन उठा के ले जाए, ये ना हो कि मेरा कोई पड़ोसी आए और आपसे मांगे और आप उसे दे दें। मेरे लिए बहुत कीमती है। और वो एक कैमरा था, एक वीडियो कैमरा था, उससे मैं फोटोज और वीडियोज लिया करता था और उसको मुख्तलिफ कार्ड्स के अंदर जो है मैं छुपा छुपा के रखा करता था। और जब मैंने उसका कार्ड निकाला और उस कार्ड को बड़ी मुश्किल से मैंने कार्ड रीडर ढूंढता रहा पूरे घर में, वहीं उस कबाड़ के अंदर से मैंने कार्ड रीडर निकाला, फिर उसको लैपटॉप से कनेक्ट किया और फिर उसमें से जब तस्वीरें निकाली तो यकीन जानिए 3 से 4 घंटे बैठ के मैं उन तस्वीरों को देखता रहा, कभी उस कैमरे को देखता रहा, फिर उसकी बैटरीज को देखता रहा, जिसकी आज कोई वक्त नहीं है। शायद कि आज बहुत अच्छे कैमरे हैं, हमारे फोन्स के कैमरे बहुत अच्छे हो चुके हैं, लेकिन वो कैमरा मेरी सबसे ज्यादा कीमती मेरा एहसासा हुआ करता था। जब कभी कहीं दोस्त घूमने जाया करते थे तो स्पेशली मुझे लेके जाया करते थे, यार इसके पास कैमरा है। फिर उन पुरानी चीजों में कुछ कार्ड्स निकले, कुछ ईद के कार्ड्स जो हम अपने टीचर्स को लिखा करते थे, कुछ हमारे दोस्त हमें लिखा करते थे, कुछ हम किसी को लिखा करते थे। उनके अंदर से जब वो शेर निकले, जो शेर बहुत पुराने थे, बड़ी हंसी आई इन शेरों को पढ़ के भी।

अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम बड़ी संभाल के रखते हैं, कुछ निशानियां हम बड़ी संभाल के रखते हैं, चाहे वो जितनी पुरानी हो जाए, चाहे उनकी बुकत इस आज के दौर में नाम ही हो, फिर भी हम उनको बड़ा संभाल के रखते हैं। हमारे लिए बड़ी कीमती होती हैं वो। तो कोई भी ऐसी पुरानी चीज या निशानी जो आपके पास मौजूद हो और आपने आज तक वो संभाल के रखी हो, तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी निशानी है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास बहुत पुरानी है और उस पुरानी चीज की अहमियत इतनी है कि आज की नई चीजें उसके सामने बेकार हैं। क्या कुछ है आपकी जिंदगी में ऐसा जो आपने पुराना संभाल के रखा है यादों के अलावा? कुछ ऐसा जो कभी आप महीने में एक दफा या साल में एक दफा या हफ्ते में एक दफा निकाल के बैठते हैं, अपनी तन्हाई के लम्हों में उसको देखते हैं, डटोलते हैं, उसके ऊपर पोरे फेरते हैं और फिर सोचते हैं, और कभी मुस्कुराते हैं और कभी दुखी हो जाते हैं, कभी आंखें नम हो जाती हैं और कभी चेहरे पे मुस्कान उभरती है। क्या कुछ ऐसा है आपकी जिंदगी में? तो बताना है जी मुझे, आपने कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। फेसबुक के ऊपर एफएम मनोमन चैनल पाकिस्तान के पेज के ऊपर तस्वीर लगी है, उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं 0511100101। ये तो हुआ चाहता है एक मौजू, इसको लेकर चलेंगे हम 12:45 तक, 12:45 तक इसको लेकर चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा एक नया मौजू। 11 जुलाई है और 12:15 हुए चाहते हैं के भी आपके साथ है और आप मेरे साथ हैं।

0: ओके जनाब, वनवन इंटरनेशनल आर के बी आपके साथ, और वक्त है 12:20, और मेरे साथ फेसबुक पे कोमल ईमान है, और कोमल ईमान यूएसए से हैं और कह रही हैं वेलकम टू द प्रोग्राम। शुक्र है जी कि आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कोमल थैंक यू सो मच। और आज वाकई आपने पहला कमेंट किया है, तो आज की ट्रॉफी आपके नाम करते हैं। लुबना महमूद है मेरे साथ, थैंक यू लुबना। फैसल अब्बास है मेरे साथ, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। ईमान है मेरे साथ, थैंक यू सो मच ईमान। और ईमान तुम्हारे शेरों को क्या हो गया है, हैं? तुम्हारी पोइट्री को क्या हो गया भाई, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना तुम्हारी पोइट्री भी बिगड़ गई है। इतना बुरा तो नहीं है हमारा भाई जिसने तुम्हारी पोइट्री भी बिगाड़ दी है। ईमान लिखती है आईफोन हो या सैमसंग हो, हमारे खुरम भाई हैंडसम। कहीं कोई आपको जोड़ नजर आता है इसमें, आईफोन हो या सैमसंग, हमारे खुरम भाई हैंडसम। चले मान लेते हैं। मेरीना है मेरे साथ जी लाहौर से, और मेरीना वाह जी काफी अरसे के बाद आप आई हैं और प्रोग्राम सुन रही हैं, थैंक यू सो मच मेरीना। सानिया आसिफ मेरे साथ हैं जी, प्रोग्राम पसंद कर रही हैं, आवाज पसंद कर रही हैं, थैंक यू सानिया। माजबी कहती है अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू हियर यू, यू आर गेटिंग, बस नजर नहीं लगाना माजबी, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। महर साद मेरे साथ सलाम कह रहे हैं और कहते हैं जी का आई होप यू आर वेल, और बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कहते हैं आई एम हैप्पी, स्टे हैप्पी, कीप शेयरिंग हैप्पीनेस। मैं हैप्पी हूँ, आप भी हैप्पी रहिए और हैप्पीनेस शेयर करते रहिए। मेरीना कहती है when have I kept so many things like this, it hurts my heart to see some and happiness to see some। क्या लिखा है भाई, क्या हो गया, नींद में हो मेरीना, जाग जाओ जरा। माँ जब भी कहती है कि when rain, पूरा जुमला लिखो माँ जी भी। जन्नत सलीम मेरे साथ सलाम कह रही है, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अभी बड़ी कॉलर लेते हैं जी, पहला कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? आतिफ अब्बासी बात कर रहे हैं जी। आतिफ अब्बासी साहब कहाँ से? कौन सा मायक है यार आतिफ आपका। ओके, तो आतिफ साहब बताइए कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने पुरानी संभाल के रखी है और जब कभी आप देखते हैं तो आपको पुरानी यादें आ जाती हैं?
1: पुरानी हमारे दौर की कुछ भी नहीं, संभाल के रखी है, मुझे बाद में मिले थे कहीं, तो जब नहीं होते थे और भाई 5 पैसे और 10 पैसे के बाद में देखे
0: उठाए, 5 पैसे और 10 पैसे। अच्छा, 5 पैसे तो संभाल के रखे हैं वो अपने पास आपने?
1: हाँ वो मुझे देर से मिले, हमारे दौर में तो नहीं थी, हमने तो नहीं चलाए, लेकिन पहले के संभाल के रखे। और आपने एक कार्ड की बात की ना यार, मैंने बड़े पते की बात याद आई यार, दो कार्ड मेरे पास ही पड़े हुए।
0: अच्छा, किसको लिखे थे?
1: नहीं नहीं वो किसी ने मुझे दिए थे ना।
0: किसने दिए थे
1: यार? दोस्तों ने दिए थे।
0: किस दोस्त ने दिए थे
1: यार? वैसी बात तो नहीं है जिस आप पूछना चाह रहे हैं, वो नहीं है।
0: मैं बिल्कुल भी वो बात नहीं कर रहा जो आप सोच रहे हैं, मैं तो दोस्त की बात कर रहा हूँ। किस दोस्त ने दिए थे, कौन हमारा भाई था वो जिसने दिए थे आपको इतनी मोहब्बत से? क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे आप सोच रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हो?
1: उसका नाम था नूरुल अमीन।
0: नूरुल अली,
1: अनिल, अनिल, अनिल,
0: अनिल। बाकी दोस्त नूर ही होते हैं, आंखों का नूर होते हैं, और ऐसे दोस्त जो कार्ड में वो तो वाकई नूर होते हैं, है ना
1: यार? मैं बताऊं ना, एक कार्ड पे मुझे क्या बना हुआ था, एक बंदा था वो गधे में बैठा हुआ था गेट के सामने, तो वो उसके नीचे लिखा हुआ था वो आए घर में हमारे, कभी उनको देखते हैं कभी उनको पिजारों को।
0: आए हाय हाय हाय, कभी उनको देखते हैं कभी उनकी पिजारों को।
1: एक और जिसके ऊपर शेर लिखा हुआ है कि है अगर के आज ईद का दिन और हम दादा से हैं, हमारे बख्त बद ने आज भी पलटा नहीं खाया, बड़ी परफ्यूम की बोतल जिसे तोसे ने दी थी, चले मिलने सभी आए वही जालिम नहीं आया।
0: आए हाय हाय हाय हाय हाय। अच्छा, इसका मतलब है कि दोस्त को नहीं मिलना था, उसको नहीं परफ्यूम सूंघनी थी, तो यार पास रख लेते।
1: पता नहीं यार बस क्या था, लेकिन ये आपने बात याद करवाई तो मुझे बड़ा मजा आया। और दूसरा टॉपिक अगर होगा पौने बारह
0: के बाद होगा।
1: चलो ठीक है ना, इतनी लंबी कोर्स में रहना, सबको मौका मिलना चाहिए। हाँ। आपको मौका दें।
0: चलो थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ? हेलो हेलो, ओके जी, कॉलर हो गई ड्रॉप। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहां से हैं?
2: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: खुर्रम भाई, क्या हाल है, ठीक है आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: भाई तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज है, बिल्कुल साफ शॉर्ट।
0: साफ और शॉर्ट
2: बिल्कुल।
0: आज मैंने धो के ना, आज धो के मैंने लटकाई थी तार के ऊपर, जरा सूखी भी अच्छी है ना।
2: परवेज अख्तर इस्लामाबाद से।
0: कैसे हैं परवेज साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो परवेज साहब, क्या पुरानी चीज संभाल के रखी है?
2: बड़ा प्यारा शो होता है आपका।
0: अच्छा, चलें, थैंक यू। परवेज साहब, कौन सी ऐसी चीज है जो छुपा के रखी हुई आपने और कभी कभार निकालते हैं दादा अबू की खुंडी के अलावा?
2: बस मेरे घर में फोटो है, तकरीबन 12-14-15 साल के थे ना जब मेरी उम्र, अभी मैं 55 का हो गया, वो मैं देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ जब घर जाता हूँ।
0: अरे वाह, मतलब जिस वक्त
2: आपके साथ बैठ के मैंने ना, तो मैं सोचता हूँ देखो कितनी चेंजिंग आ गई हमें जो है ना, बचपन तो बचपन होता है।
0: मतलब आप जब 14 साल के थे
2: संभाल के रखे हैं सर।
0: अच्छा, तो उसमें आपकी हल्की हल्की
2: माशाल्लाह उस वक्त अल्लाह ताला तो वैसे ही हर बंदे को इंसान को खूबसूरत बनाता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत मैं उस वक्त जो है आज और उस वक्त में बहुत जमीन आसमान का फर्क।
0: फिर आपको याद आता होगा कभी हम ये भी थे।
2: वैसे मेरे क्या था ये अबू आपकी तस्वीरें में जी, मेरी नहीं है तो और किसकी?
0: बताते कभी आप उनको बताया करें कि बच्चों कभी हम भी बच्चे थे।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है।
0: चले जी, तो संभाल के रखिए।
2: अनिला बाजी आई थी तो वो कहती थी ना दाजे, तो मेरी नुरात की ड्यूटी होती है फैक्ट्री के अंदर, मैसेज गया तो आप यूँ सबके लिए दुआ करता रहता हूँ।
0: जज़ाकअल्लाह।
2: तो जितने भी सुना ले सबको सलाम, डॉक्टर साहब अगर सुन रहे हैं तो कॉल पे आ जाए, डॉक्टर साहब सबको सलाम सर, आप आपको सलामत रखे, आप लोगों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, अल्लाह हाफिज सर।
0: बहुत शुक्रिया परवेज साहब। ओके जनाब, मेरे साथ आप सभी लोग हैं कॉल पे, मुझे बता रहे हैं जी कि आपने कौन सी ऐसी पुरानी चीज छुपा के रखी हुई है जिसको आप देखते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है या आपके दिल के अंदर कोई हल्की सी हमक उठती है, कोई दर्द भरी हमक, और आप कहते हैं हाय काश, काश कि वो वक्त वापस आ जाए, काश कि वो लम्हे वापस आ जाए कि जब हमने ये चीज रखी थी या बनाई थी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन साहब है?
3: सर मैं लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
0: मोहम्मद नवीद साहब, लाहौर में आज आवाज आ रही है
3: जी? मैं कह रहा हूँ बहुत साफ सुथरी आ रही है।
0: वाह जी वाह, वो मैंने बताया ना आपसे पहले परवेज साहब को भी कि आज मैंने आवाज को ना सही नहला धुला के आज तार पे डाला,
3: तार को लटकाया हुआ था।
0: हाँ तो सुखाया, आज सही धूप लगाई है आज मैंने।
3: हाँ तो आपने धूप लगाई है तो मैं अपनी आवाज को लेकर छत पे इस वक्त बारिश में नहा रहा हूँ और तार पे हाथ रखा हुआ।
0: अरे वाह, लाहौर में बारिश हो रही है
3: जी सर? ये काफी तकरीबन समझ लेके 5 बजे की हो रही है, कभी हल्की होती है कभी तेज होती है, अभी भी हो रही है हल्की हल्की हो रही है।
0: अरे वाह, फिर तो बड़ा जबरदस्त मौसम हो गया होगा लाहौर में
3: जी। लाइट गई हुई है 2-3 घंटे से लाइट गई हुई है, छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ हल्की हल्की।
0: अच्छा ये लाहौर की इस सीजन की पहली बारिश है गर्मियों की या इससे पहले हुई है?
3: नहीं, इससे पहले भी हुई थी तकरीबन 9 मुहर्रम को भी हुई थी, उसके बाद भी हुई थी, मंगलवार दिन भी हुई थी।
0: चलो ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखें आप, आपको एक गाना डेडिकेट करता हूँ मैं, ठीक है?
3: ओके, अल्लाह
0: हाफिज़।

0: ओके जनाब भाई कह रहे थे कि लाहौर में बारिश हो रही है और वाकई जी मौसम बड़ा जबरदस्त हो जाएगा अगर बारिश होगी, और बारिशें बिल्कुल आने वाली हैं, मानसून का सीजन आएगा तो बारिशें बहुत हो जानी है। आज भी मैं अपने दोस्त से एक तस्करा कर रहा था कि यार ये बारिशें क्यों नहीं हो रही, और जब बारिशें होती हैं फिर इतनी होती हैं कि हम पनाह मांगते हैं कि या अल्लाह बस थोड़ी थोड़ी कर दे, थोड़ी बस रहमत वाली बारिश कर दे, बारिश इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए। फिर हम कहते हैं हाय फिर बरसात ना हो। 12:29 है जी के भी आपके साथ है और आप मेरे साथ हैं और आप फेसबुक के ऊपर मुझे मैसेज कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। एक कॉल और लेते हैं और उसके बाद फिर आपको आप द प्रीमियम सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप खैरियत से हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज ना मर्द हजरात की कॉलें बहुत ज्यादा लग रही हैं, क्या चक्कर है? गुट्टी छुट्टी पड़ी है आज सारे मर्दों ने इकट्ठे बैठ के?
1: नहीं नहीं अभी देखेंगे आप, थोड़ी देर के बाद फिर सब ख्वातीन ही आएंगी।
0: अच्छा, ये पता नहीं क्या आपने कोई आगे पीछे लाइन बना के रखी होती है ना, पहले पहले मर्द और फिर खबर। वैसे वो कहते होते हैं कि वुमेन फर्स्ट, लेकिन आज आज मैन फर्स्ट हो गए।
1: पहले तो इसी तरह होता था लेकिन आज मेरा हालांकि कुछ रूटीन चेंज हो गया।
0: हाँ, आज सारे जो है ना वो मर्द हजरात की लगी। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है कि मर्दों का भी हक है भाई, मर्दों के भी हकूक हैं, है ना?
1: जी जी बेशक।
0: आप फिर नारा लगाएं आज, कहें कि भाई आज साडा हक।
1: हाँ जी, वो तो आज हमारा हक है।
0: ठीक है, तो जनाब बताएं हमीद गुल साहब है?
1: अच्छा जी, बात यह है कि मौसम बड़ा प्यारा हो गया है।
0: अच्छा चलिए जी, हम
1: लेकिन यहाँ भी प्यारा है, लाहौर में भी अच्छा हो गया मौसम, और यहाँ भी इसी तरह है, चल रही है थोड़ी थोड़ी रिमझिम।
0: ओके,
1: लेकिन यह है कि फासले से कभी अगर यहाँ सियाल में है तो उधर बकरा मंडी में नहीं है, सदर में है तो उधर टेंच में, इस तरह बारिश हो रही है।
0: मुख्तलिफ स्पॉट्स के ऊपर हो रही है। तो मोहतरम बताइए जी कि क्या ऐसी चीज है जो बहुत पुरानी है और जब भी आप उसको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं या रंजीदा हो जाते हैं?
1: यार क्यों आप
0: दिल के वो कहते हैं ना दिल के तार क्यों छेड़ रहे हैं
1: ना, वो नहीं कुछ पर्दा भी तो होता है ना।
0: चले आप,
1: कुछ
0: आप
1: ऐसे चीजें होती है जो पर्दे में हो जाए चीजें ना, वो क्यों? हाँ मैं आपको आम सी एक बात बता देता हूँ।
0: नहीं आम सी ना बताइए आप मुझे। नहीं नहीं, नहीं आपने
1: वो भी इसी तरह आम नहीं है, वो भी इसी तरह है कि मैं लाहौर में था तो उस वक्त जो है ना जो शलवार कमीज होती थी ना वो चेकदार कमीज होती थी और सफेद शलवार होती थी, चेकदार कमीज होती थी और कमीज होती थी मतलब रानू से भी ऊपर छोटी, जैसे शर्ट नहीं होती इस तरह की कमीज होती थी।
0: सही,
1: तो फिर बाद में लंबी होगी फिर कई तब्दील होते रहे फैशन, वो कमीज मेरे पास पड़ी हुई थी।
0: ओके,
1: तो बार बार इस तरह, तो वो मैंने बड़ी फिर संभाल कर अभी तक मेरे पास है। जब वो मैं देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वो ये भी जमाना था कि ये कमीज पहना कर।
0: अच्छा मोहतरम, उस कमीज नहीं देखे, कमीज से कमीजें तो बहुत थी ना, आप जाहिर सी बात है जब आप बड़े हुए
1: वो ही रही है ना, बाकी तो कमीजें कहाँ इतना आसान रहती है।
0: अच्छा,
1: उसको चेकदार कमीज थी उसको मैंने बस संभाल लिया था, वरना हो तो कोई ऐसी कोई पुरानी चीज नहीं है। लेकिन ये है कि दूसरी जो चीज है वो तो आप नहीं बता सकता ना।
0: अच्छा चले मेरे कान में बता दें, चुपके से बता दें, कोई नहीं सुन रहा, सारे सारे के सारे अपनी आंखें बंद करो, चले आप मुझे बता दें।
1: यार एक रुमाल है जिस पर दो नाम लिखे हैं बस।
0: अच्छा रुमाल है उस पर दो नाम लिखे हैं, अरे वाह। हाँ वैसे उन वक्तों में ना आपके दौर के अंदर रुमालों के ऊपर नाम लिखे जाया करते थे ना
1: जी,
0: और कढ़ाइयां भी की जाती थी रुमालों के। अच्छा वो पेन से लिखा हुआ है या कढ़ाई से लिखा हुआ है?
1: कढ़ाई से।
0: अरे वाह वाह वाह, कमाल कमाल, उसके अंदर खुशबू भी होगी उस वक्त की।
1: रहे वो तो होती है।
0: अच्छा खुशबू अभी बाकी है या खुशबू मदम हो गई है?
1: बाकी है, जब भी मैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद खोलता हूँ तो खुशबू उसमें होती है।
0: अरे अरे कमाल कमाल कमाल, थैंक यू मोहतरम।

शुक्रिया आपका इतनी राजदार बात बढ़ने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जब भी ना मैं इनका नाम भूल जाता हूँ, दो पर्सनालिटीज को मिक्सअप कर लेता हूँ, तो फिर मैं बचत वाला जो रास्ता है ना, बीस वाला रास्ता, वो मोहतरम वाला है। ओके जनाब, आपदा परवीन का घूम चर का आपको सुनाते हैं जी, वापस आएंगे मेरे साथ रहेगा के भी आपके साथ हैं। 12:33 है, 11 जुलाई है, 2026 है और आप मेरे साथ हैं।

ओके जनाब, 5 मिनट बाकी हैं जी इस टॉपिक के, फिर नया टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे जी। और आप सब मेरे साथ हैं और कुछ लोग हैं जिनके नाम शामिल करे जाता हूँ जी। अरूज फातिमा है, मुल्तान से प्रोग्राम सुन रही है। बाबर है मेरे साथ सरगोदा से प्रोग्राम सुन रहे हैं। सोहा है मेरे साथ जी बनीगाला से प्रोग्राम सुन रही है। सानिया है रावलपिंडी से, हैं प्रोग्राम सुन रही हैं। कोमल है गुजर खान से प्रोग्राम सुन रही हैं। हादिया है मेरे साथ जी PWD इस्लामाबाद से। आमना सर्वर हैं जी मेरे साथ इस्लामाबाद से।

ओके जी, निदा है रावलपिंडी से, बीनेश है मेरे साथ जी लाहौर से, सुमेरा है रावलपिंडी से, हुमा है मेरे साथ रावलपिंडी से, निदा फातिमा है मेरे साथ, आयत है मेरे साथ इस्लामाबाद से, इनाया फातिमा है मेरे साथ इस्लामाबाद से, अक्सा है जी अबटाबाद से प्रोग्राम सुन रही है, उजमा नाज है डीजी खान से प्रोग्राम सुन रही है,

मैरीना कहती है जी कि केबी आप अपनी कही हुई बात वापस लें, आई एम योर रेगुलर लिसनर, रात को 12 से 2 लाइट नहीं होती है, प्रोग्राम सुनती हूँ मगर टैक्स नहीं कर सकती, आज ना जाने वापडा वाले कैसे जो है वो मेहरबा हो गए और लाइट जो है वो ऑफ करना भूल गए। ओके जी, थैंक यू सो मच मैरीना। मैरीना कहती है सब कुछ छोड़ सकती हूँ, रेडियो टेलीविजन बुक्स और चाय कभी नहीं छोड़ सकती। माजमी लिखती है जी कि मैं कह रही हूँ बारिश हो रही है, मैंने डायरी कार्ड और चंद किताबें संभाल के रखी हैं। अच्छा जी, कि मैरीना कहती है कि भी फिर से कहें कि मैरीना मेरे प्रोग्राम की रेगुलर लिसनर हैं और जो कि बहुत क्यूट है, के भी फिर से कहेंगे मेरीना मेरे प्रोग्राम की रेगुलर लिस्टर हैं जो कि बहुत क्यूट हैं। ऐसे जबरदस्ती भी लोग तारीफें करवाते हैं। आयशा खान है मेरे साथ, सलाम कह रही है, कहती है कैसे हैं आप, आपका नाम क्या है। आयशा मुझे के भी कहते हैं, के फॉर खुर्रम, बी फॉर बिग। तो आपको मैं ज्यादा थकाता नहीं हूँ ना, मैं कहता हूँ आपकी एनर्जीज वेस्ट ना हो, रात को वैसे भी हिम्मत नहीं हो रही ना पूरा नाम लेने की, तो मैंने छोटा सा चुटकू सा नाम रख लिया के बी। ओके जनाब, 1 से 2 कॉलर्स मेरे साथ रहेंगे और उसके बाद फिर हम मौजू तब्दील करेंगे, तो कॉलर्स आ जाए 0511100101। पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि कौन सी ऐसी पुरानी चीज है जिसको देख के आपके दिल के तार आज भी खनक जाते हैं, दिल के पपोले उधर जाते हैं। क्या वो आपने संभाल के रखा हुआ है या फिर वो सिर्फ यादों में ही है? कभी कोई फिजिकल चीज भी ऐसी है जिसको देख के आपके दिल के पपोले उधर जाते हैं, ये सिर्फ वो आपकी यादों में ही बाकी हैं कि जिसको आप सिर्फ यादों में देखते हैं, यादों क्या वो आपने संभाल के रखा हुआ है या फिर वो सिर्फ यादों में ही है? कभी कोई फिजिकल चीज भी ऐसी है जिसको देख के आपके दिल के पपोले उधर जाते हैं।

0501 100 101 और फिर 0519202540 ये भी मिला सकते हैं 9202540।

0: अरीबा भी मेरे साथ है जी, हरिपुर से प्रोग्राम सुन रही है अरीबा। अरे अरीबा, कितने अरसे बाद आई हो अरीबा। चलें जी कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मोहतरम? रेडियो ऑफ कर देंगे तो मेरी आपके साथ बात हो पाएगी।
1: रेडियो ऑफ करना भूल गया था, पर अचानक ही मिल गई है।
0: अच्छा,
1: नंबर बोला मैंने, देखा और हिट हो गया।
0: अच्छा ओके,
1: बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोग्राम सुन के बड़ा मजा आ रहा है।
0: कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद नईम कसाना, इस्लामाबाद से।
0: ओके नईम साहब, क्या करते हैं आप?
1: बस एक छोटी सी जॉब रखी हुई है।
0: अच्छा, जॉब रखी हुई है, जॉब वाले ने आपको नहीं रखा हुआ, राइट?
1: बस ये उसी जॉब की है कि उसने मुझे रखा हुआ है, वरना।
0: अच्छा, नहीं होता है ना, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई जरा मेरी तरफ टेढ़े हुए ना तो कल से मैंने ऑफिस नहीं आना, जो जो मतलब एम्प्लॉयर का डरा के रखा होता है।
1: जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसी जॉब ने मेरे बच्चों की किफालत जारी रखी हुई है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा ओके, तो मतलब आप अपने जॉब जाने से डरते हैं?
1: नहीं डरता नहीं, मैं खुश दिली से जाता हूँ, और अभी भी मैं सबसे ज्यादा प्रोग्राम आपका सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा वही ना, इसी माशाल्लाह
1: बड़ा मजा आता है।
0: ओके, अच्छा आपका आपका काम की प्रोग्राम सुनना ही तो नहीं है?
1: नहीं प्रोग्राम पर नहीं सुनते, लेकिन प्रोग्राम में बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं और फिर सुनने को दिल करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता
0: है। अच्छा तो बताइए सर कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपने छुपा के रखी होती है और जब कभी आप निकालते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, कोई पुरानी चीज ऐसी है?
1: पुरानी चीज बस वही पुरानी तहरीरें और शायरी जो बचपन में किया करते थे।
0: अच्छा,
1: वो तहरीरें थी जो हमारे पास एक याद के तौर पर रह गई हैं।
0: किसके लिए लिखा करते थे? अच्छा तो सर फिर तो बहुत मजे की बात है ना, अगर आप 53 में हैं तो 53 आपने बहुत पुरानी शेर और शायरी आपने लिखी होगी जो रियलिटी है ना वो आपने की होगी, तो वो तो बहुत मजे की चीज है, हम नई जनरेशन को जरूर बताएं। हैं? आजकल तो मैसेज में चीजें लिखी जाती हैं, पता ही नहीं चलता वो कहाँ हवा में कहीं गायब हो जाती है ना।
1: अब तो मेरे बच्चे भी जवान हैं माशाल्लाह।
0: अरे माशाल्लाह,
1: तो बस इस चीज को पसे पर्दा ही रहने दें।
0: चलें आप मेरे कान में बता दें।
1: मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि साहब एक कॉल करते हैं पिंडी से ही ना।
0: कौन बात करते
1: हैं? बड़े अच्छे कॉलर हैं, बड़े अच्छे कॉलर हैं, परवेज साहब।
0: परवेज अख्तर साहब, जी जी,
1: परवेज अख्तर साहब,
0: जी जी,
1: उनके कॉलें सुनता हूँ मैं। उनसे नहीं कहूंगा बल्कि आप, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि तीन चीजें जो इबादत पर्दा मांगती है ना, तीन चीजें।
0: अच्छा अच्छा सर, अच्छा सर ये सुनता हूँ मैं आपसे, सुन ले, मैं सुनता हूँ, लेकिन मुझे मुझे ना एक शेर सुना दे जो आपने लिखा हो उस वक्त के लिए, कुछ एक पोएट्री तो सुना दे।
1: नहीं सर अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी तो मैं की मर्ज में इन्वॉल्व, बड़ी मुश्किल से टाइम
0: बता रहा हूँ। अच्छा,
1: कुछ याद नहीं है।
0: अच्छा, कुछ याद भी नहीं है?
1: बस कुछ भी नहीं।
0: अच्छा चलें फिर बताएं जी, कौन सी चीजें पर्दा मांगती हैं?
1: दौलत, औरत,
0: और
1: इबादत।
0: आहा, कमाल बात लिखी है सर, कमाल बात। दौलत, औरत और इबादत, तीनों चीजें पर्दा मांगती हैं, और जितना इनको पर्दे में रखा जाएगा उतना खूबसूरत रहेंगी, है ना?
1: उतनी खूबसूरत रहेंगी और उतना आपको फायदा देगा। मैं कॉमन बात करता हूँ कि दौलत का यहाँ की है जी, मेरे पास इतनी दौलत है, पूरे मोहल्ले वाले पीछे पड़ जाएंगे। इबादत का यहाँ की है जी, ये मैं ये देश या वो ही देश, तो फिर वो अल्लाह ताला के यहाँ भी ना कहते यार ये लोगों के लिए या मेरे लिए। तो औरत को जितना पर्दा देंगे आपकी लाइफ इतनी अच्छी गुजरेगी।
0: बिल्कुल जी, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए।
1: थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया, बाय बाय।

0: ओके जी, इसी मौजू पे एक और कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर नया मौजू छेड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहतरमा?
1: ये अच्छा, वो मोहतरम नजीर कियानी भाई थे।
0: अरे वाह, आपने बड़े लिख के रखे होते हैं नाम। और सबको बताती भी है कि मास्टरनी जी इधर मौजूद है। हाँ, कोई निकल के तो दिखाए मुझे।
1: आहो। और क्या, सब के ऊपर ध्यान रखे, नजर रखी,
0: सब पे नजर खास।
1: ये जितने आते हैं ना, इन सबको कहती हूँ शो सुना करें खुरम का, ध्यान लगा के, ज्ञान लगा।
0: अच्छा चलो तो अनिला बताओ फिर जी कि क्या क्या ऐसी चीज है जो छुपा के रखी हुई है, या नहीं छुपा के रखी हुई, सामने रखी हुई है, या कुछ है ऐसा?
1: खूबसूरत, बड़ा गहरा सवाल किया। चीजें तो बहुत सी होती है खुरम, मुख्तलिफ चीजें होती हैं जो जिंदगी में मतलब बड़ी प्यारी लगती हैं, फिर हम संभाल लेते हैं। अभी जो मेरे पास है तो इसका बहुत सारी, लेकिन स्पेशली मैं जिन्हें देख के खुश भी होती हूँ और अफसरदा भी हो जाती हूँ, उनमें मेरी सासू माँ की चीजें हैं, उनकी स्वेटर है। मैं अव्वल तो मैंने उनकी सब चीजें दे दी, उनकी डेथ के बाद अल्लाह ने जन्नत नसीब करे,
0: आमीन।
1: लेकिन कुछ चीजें मैंने रखी अपने पास यादगिरी के लिए, उनकी थोड़ी सी ज्वेलरी है जो उन्होंने मुझे दे दी थी, उनके एक स्वेटर है, उनका एक बड़ा ही सॉफ्ट बाहर से वो लेके आए थे मेरे हस्बैंड, उनके स्लीपर उन्होंने पहना ही नहीं, तो मुझे कहती है मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, अब घर पे ही रहती, तो तुम ये अपने पास रख लो। तो वो मेरे पास ही पड़ा हुआ, और वो इतनी प्यारी चीजें लगती है ना मुझे जब कभी मैं निकालती हूँ। इसी तरह मेरी अम्मी की एक शॉल मैंने यादगिरी के लिए वहां से ले ली थी, अल्लाह उन्हें भी जन्नत अल-फ़िरदौस में अल्लाह मकाम दे दोनों को,
0: आमीन
1: आमीन। तो
0: अच्छा अच्छा मुझे तो बताएं अनिला, जो आपकी आपकी सास थी, कितना अरसा हो गया आपसे जुदा हुए?
1: उन्हें अभी 2 साल हो रहे हैं।
0: 2 साल हो गए, ओके। और आपकी वालिदा?
1: उनको 4 साल हो गए।
0: उनको 4, तो ये आपस में दोनों कजने थी, बहने थी?
1: नहीं नहीं,
0: नहीं। क्या रिश्ता था आपस में दोनों का?
1: दोनों समधन थी बस,
0: और कोई रिश्ता नहीं था, मतलब
1: नहीं।
0: दूर पार से अचानक से रिश्ता हुआ था?
1: हाँ,
0: ओके। तो मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ कि आपका और आपकी सास का रिश्ता जो है वो कितना अरसा पुराना है?
1: मेरा और मेरी सास का? मेरी सास ने मेरे साथ 25 साल गुजारे।
0: 25 साल, और 25 साल, और उसके बाद फिर 2 साल उनकी उनकी जो वफात को भी हो गई, तो हम उसको 27 साल काउंट कर सकते हैं, राइट? चलें ठीक है, मैं इस पे बात करना चाहूंगा अनिला, आप सुनिएगा, ठीक है?
1: जी जी, जरूर जरूर। और अभी टॉपिक आप चेंज कर देंगे, फिर दूसरे टॉपिक में मैं आ सकती हूँ ना?
0: बिल्कुल आ सकती हैं, आप आ सकती हैं, ठीक है?
1: थैंक यू सो मच। मुझे ये बताना था, मैंने भाई को कॉल की थी ऑस्ट्रेलिया, और उनकी बात ये थी, कहते इतनी पुरानी बात, और मुझे पता तुमसे ही जली होगी, मुझे अम्मा ने बता दिया था किसी ने जला के स्टैंड में रखी। मैं तो भूल भी गया हूँ, टेंशन क्यों लेती हो, कोई बात नहीं, फिर क्या हो।
0: वो लास्ट वाला जो टॉपिक था वो वाला, हाँ
1: हाँ, और मैंने उनको बताया मैं रेडियो सुनती हूँ इस तरह से, तो मुझे मेरे आरजे थे, उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप जरूर उनसे एक्सक्यूज करें, कहते अच्छा मजेदार आरजे है फिर।
0: चलो ठीक है,
1: थैंक यू सो मच, सबके लिए बहुत ही प्यार, मेरे जितने बहन भाई आते हैं,
0: बहुत शुक्रिया, बाय बाय।

अच्छा नीला ने ना बड़े मजे की बात की कि मेरे लिए जो सबसे खूबसूरत चीज है वो मेरी सास के स्लीपर्स हैं और कुछ चीजें हैं, और तो उससे मुझे ना एक बड़ा अच्छा भी लग रहा था और मुझे सुन के ना बड़ा कुछ मैं गेट भी कर रहा था कि कितने खूबसूरत होते हैं वो रिश्ते के जो हम खूबसूरती से बनाते हैं, बर्दाश्त से बनाते हैं, मोहब्बत से सींचते हैं उन रिश्तों को, और फिर उनकी जो उनका जो रिजल्ट आता है ना, जो उनका फल निकलता है, वो इतना खूबसूरत होता है कि जब आप जुदा भी हो जाते हैं ना तो आपके जूतों से भी प्यार किया जाता है।

वरना हम जहाँ कहीं भी सुनते हैं ना, तो सास को हमेशा एक बुरे लफ्जों में सुना जाता है, या सास को कहा जाता है कि बस ये जल्लाद है, बहुओं को टिकने नहीं देती। सास को एक बड़े बुरे लफ्ज से शायद कि हम महसूस करते हैं, हमारे माशरे के अंदर सास को एक अच्छा नहीं समझा जाता, आई थिंक सो। लेकिन कुछ सासें ऐसी होती हैं कि जो अपनी माओ से बढ़कर सासें हो जाती हैं, वो अपनी माओ से बढ़कर माएँ बन जाती हैं। ऐसी बहुत सारी खवातीन मैंने देखी हैं कि जो अपनी सासों के लिए इतना करती हैं कि शायद उनको अपनी माएँ भूल जाती हैं, उनको वो सासें ऐसे लगने लगती हैं कि जैसे वो उनकी सगी माएँ हैं। और ऐसी बहुत सारी सासों को मैंने देखा है कि जो अपनी बहुओं के साथ अपनी बेटियों से ज्यादा करती हैं। बेटी अपनी को डिच करा रही होती है, उसके साथ झूठ बोल रही होती है, बहू के लिए उससे छुपा की चीजें ले रही होती है, और बेटियां जेलस हो रही होती हैं कि जब से ना बहू आई है ना, तब से हमारी माँ नहीं रही। ऐसे दुखड़े बेटियां सुना रही होती हैं। अनिल ने कहा ना कि उनके चप्पल जो है वो मुझे, जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे याद आती हैं वो, और उनके साथ मोहब्बत का एक वालेहाना रिश्ता था, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि कितनी खूबसूरत इंसान वो हुई होंगी जिन्होंने एक बेटी के दिल में इतनी मोहब्बत डाली कि 25 साल का अरसा गुजर जाने के बाद और फिर 2 साल जुदाई के बाद भी शायद उनकी बेटी उनको याद ना करती हो। मुझे याद पड़ता है कि जब मेरी दादो का इंतकाल हुआ था, मैं बहुत छोटा सा था, तो हमारे घर में जो सबसे ज्यादा दहाड़े मार के रो रहा था वो मेरी वालिदा थी। और मेरी वालिदा को जो हौसला देने वाली थी वो मेरी पप्पो थी, और मेरी पप्पो मेरी वालिदा को हौसला देती और कहती कि बस ना रो, बस अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह की तरफ जो है वो रुखसत होना था और रुखसत हो चुकी। ये छोटे छोटे जो जेस्चर्स होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है, जो इस छोटे छोटे जेस्चर्स में दिख रही होती है ना, ये पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। तो मैं कहना चाहूंगा उन तमाम सासों को जो इस वक्त मुझे सुन रही हैं कि अपनी बहुओं को अपनी बेटियां बना लें, क्योंकि यही आपका सासा है। आपकी अपनी बेटियां किसी और के घर की बेटियां हैं, अब उनको भी अपनी बेटियां जरूर तस्लीम करें, उनको भी जरूर उनके साथ मोहब्बत रखें, उनको उनका भी जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब पेके से पूछा नहीं जाता ना, तब बेटी भी बहुत परेशान होती है। लेकिन घर में जिसको आप बेटी बना के लाए हैं, उसको अपनी बेटी से ज्यादा अजीज रखें, क्योंकि उसकी अब हकीकी माँ आप हैं, और माँ का मकाम हासिल करना आपका काम है। और मैं बेटियों को कहूंगा कि बेटियों को भी ये सोचना चाहिए कि जो माँ हमारी माँ थी वो हमारी माँ है, लेकिन ये भी हमारी माँ है, और अब सारी जिंदगी इस माँ के साथ गुजारना है, और जितनी इस माँ के दिल में मोहब्बत डालूंगी उतनी जिंदगी खूबसूरत होगी। अगर इस माँ को मैंने जीत लिया तो ये माँ सब कुछ कुर्बान कर देगी, अपना बेटा भी कुर्बान कर देगी, अपना सब कुछ मेरे पे निछावर कर देगी। अगर बेटियां ये समझना शुरू कर दें और उन माओं को पराया ना समझें, उन सासों को सास ना समझें, अपनी माँ समझना शुरू कर दें, और अपनी बहुओं को अगर सासें बहू ना समझें, बेटियां समझना शुरू कर दें, तो घर में इतना खूबसूरत सा एक गुलदस्ता बनता है कि जिससे मर्द भी खूबसूरत और दिल से बिल्कुल आजाद रहता है, हर परेशानी से आजाद रहता है, बच्चों की तरबियत बहुत खूबसूरत होती है, घर एक अमन का गहवारा बन जाता है। तो इसी तरह रिश्ते जो है वो आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह फिर आपकी नस्लें आगे परवान चढ़ती हैं, नस्लों के अंदर फिर ये जो चीज़ें हमारे घरों के अंदर होती हैं, ये फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी हम उसको पोर्ट्रे कर रहे होते हैं, और हमें दिख रहा होता है लोगों के साथ हमारा बिहेवियर, लोगों को समझना, खवातीन के बारे में या मर्दों के बारे में ख्यालात रखना, या किसी रिश्ते के बारे में को ख्यालात रखना, ये सभी चीज़ें हमारे घरों के अंदर की हमारी तरबियत हमें दिखा रही होती है।

ओके जनाब, वक्त हुआ चाहता है एक पूरे का पूरा एक, और आपको सुनाता हूँ मैं खूबसूरत सा गाना राहत फतेह अली खान की आवाज में, और फिर वापस आऊंगा और मौजू आपके साथ दूसरा छेड़ूंगा। 15 मिनट ऊपर हो गए हैं लेकिन कोई बात नहीं। मुझे कहते हैं कि भी आप सुन रहे हैं वन इंटरनेशनल, और आज 11 जुलाई 2026 है। वक्त हुआ चाहता है एक, इस 1 o'clock मैं साथ रहिएगा। के भी मुझे बुलाते हैं और आप में सब फेसबुक पे हैं और मुझे कॉल कर रहे हैं 0511100101 को। जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं आपने, बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप सारों को मैं मौका दूंगा प्रोग्राम में हिस्सा बनने का।

कि हम जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ बड़े होते हैं, जिनके साथ खेलते कूदते हैं, जिनसे पढ़ते हैं लिखते हैं, माँ की गोद से लेकर लहर तक जिनके साथ वक्त गुजारते हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सबसे पहली चीजें जो हम सीखते हैं वो अपनी माँ से सीखते हैं। तो गाहे बगाहे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपनी फैमिली से चीजें सीखना शुरू करते हैं। फिर स्कूल का अमल दखल होता है, वहां उस्तादा से चीजें सीखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज और फिर जिंदगी से चीजें सीखते हैं। हर शख्स की एक कहानी होती है, हर शख्स की एक स्ट्रगलिंग स्टोरी होती है, और हर शख्स की कामयाबी और नाकामयाबी के पीछे बहुत सारे राज होते हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मुख्तसर, कुछ बहुत तवील कहानियां होती हैं। लेकिन हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो जाने अनजाने में शायद उनको भी नहीं पता होता कि वो हमारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल के रख देते हैं। उनको शायद नहीं लगता कि उनका ये छोटा सा जेस्चर या उनकी ये छोटी सी हरकत या छोटा सा काम या छोटी सी बात, छोटी सी सपोर्ट या छोटा सा धुतकार देना हमारी जिंदगी को एकदम से और यकतरफा बदल कर रख देता है, यकसर बदल के रख देती हैं वो चीजें जो वो छोटी सी हरकत करते हैं, छोटी सी बात करते हैं, छोटा सा कुछ सिखाते हैं, या अगर कुछ नहीं भी करते तो बस हम उनकी जिंदगी से कुछ इंस्पायरेशन ऐसी दे लेते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। बहुत सारे क्रिकेटर्स की आप कहानी सुनते हैं तो वो अपने मेंटोर्स की बात करते हैं कि मैं फलां क्रिकेटर को देखा करता था और उसकी जिंदगी से इंस्पायर होकर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की और मैं यहाँ से वहां तक और वहां से यहाँ तक पहुंचा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आप देखते हैं, कोई एक्टर्स हैं, कोई सिंगर हैं, कोई कुछ भी हैं, किसी भी वजह से मशहूर हैं, तो वो किसी न किसी को सुन के या किसी न किसी को देख के या किसी न किसी की वजह से वो शोबे में आ जाते हैं और फिर वो उनकी जिंदगी बन जाता है। कोई एकद गाना, कोई एकद वीडियो, कोई एकद फिल्म या कोई एकद ड्रामा या कोई एकद कोई भी चीज उसकी जिंदगी को अक्सर बदल के रख देती है। सो द कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जिंदगी के अंदर कम्युनिकेशन ही हमारी जिंदगी को बदलती है, और कुछ किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, कुछ किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, लेकिन जिस तरह की भी कम्युनिकेशन होती है हमारी जिंदगी को बदलने में अहम किरदार अदा करती है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम किसी से कुछ सीख रहे होते हैं और हमारी जिंदगी को अगर वो बदल देता है तो उसको नहीं मालूम होता कि मैं उसकी जिंदगी को बदल दूंगा। और फॉर श्योर ऐसा होता है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कोई शख्स के जिसने कहा हो कि हाँ ये काम या ये बात मैंने इसकी जिंदगी को बदलने के लिए की थी और इसकी जिंदगी बदली है। हमेशा ऐसी चीजें बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं। जैसे कि अगर आप आजकल टिकटॉकर्स को देखें या जितनी मशहूर जो आजकल सेलिब्रिटीज बन रहे हैं, लोग छोटी छोटी बातों से मशहूर हो रहे हैं, एक जुमले से मशहूर हो रहे हैं, तो वो ये सोच के कभी भी नहीं बोलते कि मैं इससे मशहूर हो जाऊंगा या वायरल हो जाऊंगा, और वो वायरल हो जाते हैं। और जो चीजें वो वायरल होने के लिए बोलते हैं उनसे वो कभी भी वायरल नहीं होते। बड़ा अजीब सा फिनोमेना है ना। इसी तरह हमारी जिंदगी के अंदर भी कुछ चीजें जो बदलाव ला रही होती हैं, हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता, या जो कर रहा होता है, जिस जो ये चाहता है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए, उसको भी मालूम नहीं होता कि आपकी जिंदगी में वो कैसे बदलाव लेकर आ जाती है। जैसे कि मैं अगर एक छोटी सी मिसाल दूं कि मेरे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन में एक शख्स काम करते थे, और जब वो नए नए आए और जब वो जॉब उन्होंने स्टार्ट की तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो से या डिफरेंट एक जो है वो एंगल से अपनी चीज़ों को देखते थे। उनका एक लेंस बड़ा डिफरेंट था और वो चीज़ें बड़ी जो है वो एक मुख्तलिफ अंदाज से देखा करते थे। तो एक दिन मेरे साथ वो बैठे और मुझे उन्होंने कहा कि यार खुर्रम, इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए और इस तरह से होती नहीं है, लोग इस तरह से करते हैं, उस तरह से करते हैं। तो मैंने उनको वैसे कहा कि मैंने कहा
सर इस तरह ना आप इस तरह से चलें यहाँ पे और इस तरह से चलना चाहिए आपको, तो मैंने उनको अपना एक वे दिखाया जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो उसको इतना फॉलो करेंगे या उनके लिए इतना ज़्यादा जो है वो ये पाथ बन जाएगा। तो अब जब कभी भी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और बहुत ही अच्छी हमारी फ्रेंडशिप है, जब कभी भी वो किसी महफिल में बैठते हैं तो कहते हैं जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर

0: الشخصيات स्टोरी आप मुझे बतानी है के अंदर समझ गए जी मेरा जिस तरह मैं कहता हूँ प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मैंने एक शख्स को सीखा जब मैं उनको ज्वाइन किया था और जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे इतना बाकी फॉलो कर रहा है जब वो मेरे पास बैठता है वो अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग में लगा लेता है और जब वो उठ के जाता है तो फिर वो जो रिकॉर्डिंग उसने की होती है उसको कई बार सुनता है और बार बार सुनता है कि क्या बोला था सर ने उसको अपने पास नोट पैड के ऊपर नोट करता है अच्छा ये जुमला बोला था ये ऐसे करना ये ऐसे करना ये ऐसे करना तो लफ्ज़ बाय लफ्ज़ हर्फ बाय हर्फ और जुमला बाय जुमला जो है वो मैं उनको फॉलो करता था और जो भी वो जुमला बोलते थे फिर उसकी उसकी डीप रिसर्च करता था कि उन्होंने ये जुमला क्यों बोला और ये काम करने का क्यों कहा और इसका इम्पैक्ट क्या आना है इसके ROIs क्या हैं इसके नुकसान क्या हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो सारी चीज़ों को मैं बड़ी डीपली रिसर्च करता था और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि खुर्रम इतना ज़्यादा जो है वो मेरी चीज़ों को फॉलो करता है या इतना डीपली मुझे देखता है तो जब कभी अब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि सर मैंने ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में जो भी सीखा है वो आपको फॉलो करके सीखा है या आपसे सीखा है तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपको इस तरह से फॉलो करता था तो वो अक्सर डर भी जाते थे कहते अच्छा तू मुझे रिकॉर्ड करता था मैं कहता सर कभी भी मैंने गलत इंटेंशन के लिए आपको आपको रिकॉर्ड नहीं किया था मैं हमेशा आपकी बातें इसलिए रिकॉर्ड करता था कि मैं याद रख सकूं मैं भूल ना जाऊं कुछ ऐसी एक चीज़ को मिस आउट ना कर जाऊं कि जिसकी वजह से शायद मैं वो रिजल्ट जनरेट ना कर सकूं जिस रिजल्ट की आपने मेरे से एक्सपेक्टेशन रखी है तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स मुझे बदलने वाला है तो वो शख्स है जिसने मुझे ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ सिखाया और मेरे अंदर अपना अक्स डाला और आज अगर मेरे अंदर कुछ है या मैं जो चीज़ें पोर्ट्रे करता हूँ या जो चीज़ें मैं कर पाता हूँ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर उसके अंदर अगर मैं कहूँ तो 90% उस शख्सियत का किरदार है या उस शख्सियत को फॉलो करने की चीज़ें हैं जिसको मैं बड़ा ब्लाइंडली फॉलो करता था और उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि खुर्रम मुझे इतना ब्लाइंडली फॉलो करता तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर मैं उनका नाम तो यहाँ शामिल नहीं करूँगा क्योंकि ये सीधा राज है लेकिन आप मुझे बता सकते हैं जी कॉलर हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे साथ कौन है कहाँ से हैं
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू
0: क्या हाल है हमीद गुल साहब
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है आप खैरियत से हैं
0: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ देखिये आज आपका नाम मैंने बिल्कुल ठीक लिया
1: जी जी बिल्कुल ठीक लिया
0: है ना
1: आपसे तो अच्छा है कि अनिला को यहाँ बिठा दें
0: मुझे नाम नहीं नहीं उसको ना मैं साथ वाली कुर्सी पे बिठा दूं जैसे ही कॉल आए तो मुझे कान में बताए खुर्रम अमीर गुल साहब है अमीर गुल साहब
1: माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी बहन को खुश रखे कैसे उन्होंने पहचान लिया और आपने नहीं पहचाना
0: हाँ बस मैं मुलक्कड़ हूँ ना उम्र हो गई
1: नहीं मेरा ख्याल है शरारत कर रहे हैं
0: नहीं नहीं अमीर गुल साहब मेरा नहीं उम्र का तकाजा है ना बूढ़ा हो गया है ना
1: नहीं मसला है यादाश्त का तो वो सात बादाम सुबह खाया करें
0: सात बादाम सुबह
1: हाँ जी सात बादाम
0: किसके साथ खाया करें
1: रात को पानी में उसको भिगो देना सुबह उनका छिलका खुद खुद उतर जाएगा
0: अच्छा
1: तो फिर छिलका उतार के फिर वो सात बादाम खा ले
0: तो किसके साथ खाया करो उम्मीद गुल साहब
1: नहीं अगर वैसे तो खाने हैं तो वैसे अगर एक कप दूध कप मिल जाए तो वो भी अच्छा है
0: अच्छा अच्छा मैं समझा आप किसी शख्स के साथ बैठ के खाने की बात कर रहे हैं उसके साथ ओके मतलब अकेले खा सकते हैं
1: जी
0: अगर अगर कोई अटक गया गले में तो पीछे से कोई दुबकी लगाने वाला तो हो ना पीछे से वो कैड़ी के मुंड नहीं लगाते होते हैं तो फंस भी तो सकता है ना कैड़ी कैड़ी जी
1: चलो कुछ अच्छे का बहाना तो
0: बना जी अमीर गुल साहब आज बड़े खुल के हंसे हैं वैसे है ना
1: जी बिल्कुल
0: चले तो अमीर साहब बताइए जी कि कौन है आपकी जिंदगी में ऐसा जिसने आपको जो ना वो
1: देखिए वैसे तो लोगों को ऐसे होता है कई बार हमें भी ऐसे हुआ है कि किसी की कोई बात ऐसी क्लिक कर जाती है ना तो वो ऐसे दिल में बैठ जाती है फिर उसे ले करना तो फिर आदमी आप सारा वो रवैया बदल जाता है, वो यानी बिल्कुल ही वो तब्दील हो जाता है
0: जैसे आप...
1: एक बात की, लेकिन मुझे मुझे अल्लाह ताला का ये बड़ा करम हुआ है कि मुझ पर खुसूसी अल्लाह की तरफ से मेहरबानी हुई है अचानक, और मैं कहूँगा कि ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई दोस्तों को पता होगा कि मैं एक अदारे में था ना गलगित वाली साइड पे, शायद आपको भी ये मैंने बताया हो, तो क्योंकि ये मेरी जिंदगी का जो है ना तब्दील होने का वो वाकया, इसलिए मैं बता रहा हूँ
0: जी जी।
1: और ये खुसूसी मुझ पर अल्लाह ताला का कर्म हुआ
0: जी जी।
1: तो वहाँ पे हम एक अदारे में था, तो वहाँ पे मैं कम उम्र सब से, तो वो कहते कि ऊपर पहाड़ पे ना 500 मीटर पहाड़ पे जाके ना, तो आगे से मैदान सा आता था, उस मैदान में अंगूर के लगा हुआ था, अंगूर
0: अच्छा।
1: अंगूर और खुबानी लगी हुई थी।
0: अच्छा।
1: वो कहते जाओ नजीर आप तोड़ के ले आओ, मैं जाता भागता हुआ, मेरे लिए क्या था 500 मीटर जगह, तो वो भाग के चढ़ के फिर लास्ट में जब बाघ के करीब पहुंचे तो वहां से नीचे छलांग लगा के ना बाघ में हम दाखिल हो जाते थे।
0: अच्छा।
1: फिर वहां से तोड़ कर ले आते और फिर आकर इकट्ठे जितने हम 10-12 आदमी होते खाते। तो ये सिलसिला रहा कोई 4-5 दिन रहा, तो एक दिन जब अल्लाह ताला ने कर्म किया, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, तो मैं उसी तरह फिर भागता हुआ गया, तो वो जब उस छलांग लगाई नीचे ना उस बाग में, तो अचानक मुझे ख्याल आ गया, मैं उधर ही मतलब रुक गया, मैं ख्याल आ गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे वो फिर वाकया याद आ गया, जो दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया था, और वो फिर सेब को लंबी बात है मैं शार्ट कर देता हूँ, तो वो सेब उन्होंने खा लिया, तो उन्होंने क्या हो ये तो मैंने किसी के बगैर इजाजत के सेब खा लिया। तो वापिस दरिया के जहाँ जिधर से आ रहा था वापस के देखा एक बाघ का रख के झुका हुआ था, तो वो फिर बाघ के मालिक के पास चले गए, उन्होंने कहा कि ये आपका मैंने दरिया में बहता हुआ सेब खा लिया, तो ये मुझे आप माफ कर दें, ये ना हो कि आखिर में मेरी इस पर पकड़ ना हो जाए। तो वो भी आगे थे बुजुर्ग थे जानते इतना, एक आदमी दरिया में बहता हुआ सेब का अगर कितना आया, और वो पहचान गए उनको, ये भी कोई मतलब इनके पास है अल्लाह ताला की मेहरबान। तो उन्होंने कहा भाई नहीं मैं ऐसे तो नहीं आपको दूंगा, आप मेरे बाग की जो है ना वो जो है ना बागवानी करें 6 साल तक, 6 साल तक बागवानी करें, उसके बाद मैं आपको फिर इसको माफ करूंगा। वो 6 साल तक बागवानी की, और जब वो टाइम पूरा होगा तो उन्होंने कहा जी आप मुझे आपने सेब माफ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं एक शर्त और है कि मेरी बेटी है जो जो मतलब आंखों से अंधी है, जबान से बोल नहीं सकती है, और जो है ना पांव से मतलब चल नहीं सकती है, उससे आपने निकाह करना है। उन्होंने कहा इसके बगैर कोई चारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं इसके बगैर मैं नहीं माफ करूंगा। खैर वो शादी होगी उनकी, और जब वो दुल्हन के पास गए तो देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे और बड़ी हसीन तो खातून थी, तो वो वापस निकलने लगे, तो कहा नहीं यही मेरी बेटी है। तो मैंने आंधी इसलिए कहा कि इसने कभी किसी घर मात को नहीं देखा, और गोंगली इसलिए कहा कि इसने किसी गैर मार से बात नहीं की,
0: कमाल।
1: और पांव से ये कहा कि ये चल कर कभी बाहर नहीं गई,
0: अरे कमाल।
1: इसलिए तो वो मुझे याद है, मैंने कहा इस वो मतलब है मैं कहां वो एक सेब और कहां ये रोज आना मैं तोड़ कर ले जा रहा हूँ, बाघ के मालिक से इजाजत नहीं ली और इसी तरह तोड़ कर ले जाऊँ तो मेरा क्या हाल होगा। इस कश्मकश में मुझे 10-15 मिनट वहां पे गुजर गए और मुझे पसीना आ गया वहां पर बैठे बैठे, और क्योंकि अंदर जैसे मेरे कोई लड़ाई चल रही है कि एक एक तो एक तरफ से मुझे मतलब अंदर से आवाज आ रही है कि यार रोज तोड़ के लेकर जाते हो, तो आज इतना चल ऊपर चढ़ के आए तो आज भी तोड़ के ले जाओ। उसी तरफ से जो ताकत है वो कहती कि नहीं नहीं नहीं ये बगैर इजाजत के आप मालिक के बगैर इजाजत के आप तोड़ रहे हैं, आप किस तरह आपकी बख्शिश होगी बगैर इजाजत के आप ये घर। तो वो ताकत शायद काबू कर लिया मैंने और अपने आप को सब करके मैं नीचे उतर आया। यानी उसके बाद मैंने अपने आप को महसूस किया कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, मेरी कुछ हालत ही मतलब और होगी, और अल्लाह ताला ने इतनी मेहरबानी की उसके बाद میرا خیال ہے کہ مجھے ہر بات اس طرح نظر آتی ہے جس طرح سامنے
0: میں حمید گل صاحب میں حمید گل صاحب اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, میں آپ کال بند کریں گے تو میں خلاصہ کروں گا.
1: تھینک
0: یو جی, بہت
1: شکریہ.
0: بہت شکریہ نذیر کیانی صاحب, بہت شکریہ. اچھا جی, جو انہوں نے بات کی, اتنا لمبا قصہ انہوں نے سنایا ہے, اس قصے کے جو اس کا جو سینس ہے, جو اس کے کرکس کو میں پہنچا ہوں, وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ جب غلطی کرتے ہیں, بعض اوقات آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں, یا بعض اوقات آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, یا بعض اوقات کچھ برا آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ برا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے. ہے نا کمال بات, کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر کچھ برا ہو رہا ہے نا, وہ آپ کی زندگی کو, وہ چھوٹا سا جو برا ہو رہا ہے, وہ جو آپ کو برا لگ رہا ہے, آپ کی زندگی کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیتا ہے اور آپ کو بہت خوبصورت انسان بنا دیتا ہے. تو سامنے دیکھنے والا جو جج ہے, جو دیکھنے والا ہے, جو میری طرح آپ کی طرح دیکھنے والا ہے, جو ججمنٹ کرتا ہے یا کسی کو جج کرتا ہے کہ اگر اس وقت اگر میں حمید گل صاحب اپنا نذیر کیانی صاحب کو دیکھتا اور میں کہتا کہ نذیر کیانی صاحب تو سیب توڑ رہے ہیں, تو چوری کر رہے ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ان کی زندگی کا کتنا بڑا, میں کہوں کہ ٹرن اوور ہو رہا تھا, یا ان کی زندگی کتنی بدل رہی تھی, جس کو میری آنکھ دیکھ رہی تھی کہ وہ غلط ہو رہا ہے, وہ کچھ برا ہو رہا ہے, لیکن رب کے ہاں وہ کیسا تھا اور رب کے ہاں وہ کیا ہو رہا تھا. تو اس لیے جب کبھی بھی آپ کچھ غلط بھی ہونا ہوتا دیکھ رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں, تو اس کو جج پلیز مت کیجئے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, یا کوئی کسی سے کچھ چیز ایسی ہو رہی ہے, تو اس کو جج مت کیجئے, اس کے لیے دعا کیجئے. کالر لیتے ہیں جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ, کون ہے میرے ساتھ, کہاں سے؟
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کیا حال ہے حمید گل صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے حمید گل صاحب؟
1: آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہیں؟ آپ نے ایک دم موضوع کو تبدیل کر دیا.
0: میں بالکل ٹھیک ہوں. کون سا موضوع تبدیل کیا حمید گل صاحب؟
1: جناب اتنا غیر مضمون میں چلے گئے آپ, موضوع میں وہ مضمون بڑا مشکل ہے. ویسے
0: کون سے والا؟
1: یہ سبجیکٹ بڑا مشکل ہے.
0: کون سے والا حمید صاحب؟
1: جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں.
0: اچھا, جو ابھی کر رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے, تو بتائیں.
1: زندگی میں وہ بکول شعب صاحب کی یہ دنیا ایک حیرت زدہ ہے. میں برے واقعات ہوتے ہیں, برائی مشاہدے ہوتے ہیں, ایک وقت آتا ہے ہر دنیا ہر انسان کی زندگی میں وہ بدل جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے بڑی آپ کو یہ بڑی نام ہوتا ہے اللہ کا.
0: بے شک بے شک.
1: میں جہاں تک میں اس بات کو سمجھوں
0: جی,
1: کہ وہ آپ کو بڑا انعام ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آ جاتی کہ نہیں یہ زندگی جینے کی جو ہے, اب میں نے یوں گزارنی ہے, اسے تو گزر بھی ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو تو یہ ہوتا ہے زندگی میں. میں آپ کو ایک نظم سناؤں اپنی. اصل میں یہ چاہ رہا تھا
0: جی
1: کہ ہم شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, آپ حق رکھتے ہیں, شاید میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم آدھے سچ کے ساتھ پی رہے ہیں. تو یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, آپ کوئی بھی اس سے اختلاف کر سکتا ہے. تو وہ ہم آدھے سچ کے ساتھ پی رہے ہیں. میں شاید دو چار لائنیں سنا کے اجازت چاہوں گا, وہ اس میں اگر آپ اجازت دیں تو.
0: جی جی جی جی جی, میں سمجھ رہا ہوں.
1: نظم کو عنوان بھی آتا تھا
0: جی,
1: جب میں اپنے ماں باپ کی بات کی, میں چلے اس کو تھوڑا سا, کچھ ماں نے اور کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے, ایسا ہی ہے
0: جی جی.
1: کچھ ماں نے اور کچھ باپ, کچھ ماں نے کچھ باپ نے تھا سکھایا مجھے, اور جب میں بڑا ہوا تو حالات نے یہ بتایا مجھے.
0: واہ,
1: وہ آدھا سچ تھا, وہ آدھا سچ تھا.
0: آئے آئے آئے.
1: اور جب پورا سچ ہاتھ لگا تو پتا چلا اس آدھے سچ کے پیچھے دیکھ کیا تھا, دل میں چھپا وہ چھید کیا تھا.
0: واہ واہ واہ, کمال کمال.
1: میں آپ کو اس لائن پہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا
0: جی.
1: آپ سوچتے نہیں تھے میں کیا کہہ نکلا ہوں, کہ وہ آدھا سچ تھا جب پورا سچ, وہ آدھا سچ تھا جب پورا سچ ہاتھ لگا تو پتا لگا کہ اس آدھے سچ کے پیچھے بھید کیا تھا, دل میں چھپا وہ چھید کیا تھا.
0: آئے آئے آئے.
1: خورم صاحب نوٹ کیجئے اس بات کو کہ وہ آدھا सादे सच के पीछे वो भेद क्या था, दिल में छुपा वो छेद क्या था, जिसको मैं अब तक सूझ समेत लिटा रहा।
0: आए हाय हाय हाय, कमाल सर कमाल, महफिल लूट गया आज।
1: नहीं वो महफिल क्या लूटनी है हमें, वो एक अपना अपने तजुर्बा है, कैथारसिस का अमल है एक
0: जी।
1: ठीक है, आपने आपने पहले उस तरह छेड़ा, यानी पहले सवाल पे, तो मैं उस वक्त आप अगर मेरी कॉल लग जाती तो मैं आपसे कहता कि खो गया हूँ, कोई खिलाफ पता हूँ, कोई तो मुझको मेरी खबर ला दे, लेकिन मैं आज भी वही खड़ा हूँ। अच्छा। इस आधे सच के साथ जो हम जी रहे हैं, ऐसी हमारी बदकिस्मती रही। ये एक एक बड़ी एक बसी मैं बात करूँ, पता नहीं लोगों तक मेरी बात कहाँ तक पहुँचती है कहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन बात यह है कि हम अपनी एक एक सांस की अवज ये जो हम जी रहे हैं, ये एक अजीब सा माहौल में हम, तो जो आप कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जब बेटी पैदा हुई सुमैया सुमैया गुल, जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई खराब था या मैं कोई याज था या मैं कोई आवारा था, ऐसा नहीं है, खुदा ना खास। लेकिन मैंने वो उसकी जब मेरी पहली पहली बेटी पहले मेरा बेटा हुआ था, तो बेटी हूँ मैं, सोचा उसको मैं, मेरी जिंदगी में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। और अब जब मेरी नवासी हुई तो उसके बाद एक और बड़ी अजीब सी तब्दीली आ गई।
0: अच्छा,
1: ये जिंदगी का ये नाम है आपके,
0: बेशक बेशक बेशक,
1: पूछ रहे हैं।
0: थैंक यू उम्मीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आपका। अमित गुल साहब थे जी मेरे साथ, और अमित गुल साहब जब भी आते हैं शेर व शायरी के थ्रू जो है वो दिल के तार जो है वो छेड़ जाते हैं, बहुत खूब कहते हैं, कमाल कहते हैं, कमाल कहते हैं। आमिना सरवर है मेरे साथ इस्लामाबाद से, आमिना आप भी कमाल करती हैं। सोनिया है मेरे साथ जी इस्लामाबाद से जी, और सोनिया प्रोग्राम सुन रही है, थैंक यू सोनिया।

वन ऑफ इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं जी, डेढ़ बज गया है और मुझे के भी कहते हैं डेढ़ बज गया, एक बज के 30 मिनट हुए चाहते हैं जी, और मुझे के भी कहते हैं। आप मुझे कमेंट कर रहे हैं जी फेसबुक के ऊपर, आपकी कमेंट शामिल करता हूँ।

ताहिर अजीज है मेरे साथ जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, डियरेस्ट एफएम 101, यू आर इनवाइटेड सुपरस्टार मोहम्मद आतिफ, इट्स बेस्ट मोमेंट टू 2026, वेल डन, गुड जॉब। ओके जी, पुराना कोई कमेंट हमने कर दिया। माँ जमी कहती है, मेरी जिंदगी सर वहीद शेख और मैडम सदफ की वजह से तब्दील हुई, बेहतर हुई, और बाकी एफएम आरजेस मैंने कभी नहीं भूल सकती। अरे कमाल, सारा मुद्दा साढ़े पा देता है माँ जमी।

0: क्योंकि जी सोनिया कह रही है कि इस्लामाबाद में बारिश हो रही है तो मुझे बारिश वाला गाना सुनाएं, तो बारिश वाला गाना कौन सा है सोनिया मुझे बताएं। कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है मेरे साथ जी बारिश में? अस्सलाम वालेकुम, हेलो, ड्रॉप हो गए हैं। नेक्स्ट कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। ओ बाजी आवाज नहीं आंदी,
1: वो बस हैंसी लगाई थी तारी थी।
0: किधर, क्या कर रहे थे?
1: लड़का हैंसी लगाई थी, वो तारी थी।
0: हाँ हैंसी उतार के बात करते ना भाई, क्या करते हो यार, क्यों मेरे दुखों में इजाफा करते
1: हो?
0: क्या क्या क्या, जरा आराम आराम से बात करें ना। आप फिलहाल फारिग हैं और आपकी आई साइड का मसला है। आपकी आई साइड को क्या हुआ है?
1: मेरी नजर वीक है।
0: कम दिखता है आपको? ओके,
1: तो नाम
0: लाहौर से बात करते हैं। ओके, आपकी उम्र क्या है मेरे भाई?
1: नाम हुज़ैफ़ा
0: है। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा क्या उम्र है आपकी?
1: 23 साल
0: के। आप तो हुज़ैफ़ा बहुत कुछ कर सकते हैं आप, यार क्या बात करते हो। नजर, कुछ लोगों की तो नजर है ही नहीं है बिल्कुल, वो भी बहुत कुछ करते हैं, है ना। चलो तो मुझे बताओ कि जिंदगी को किसने तब्दील किया है? किसने किया? किसने किया? मुझे नहीं समझ आ रही, अल्लाह की कसम नहीं आ रही,
1: नहीं
0: समझ आ रही। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जिंदगी को किसने तब्दील किया? अच्छा यार छोड़ो, ये बता दो कपड़े कब तब्दील किए?
1: कपड़े
0: रात को तब्दील करते हो, कर लिए? चलो ज़ैफ़ा, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा काम किया। ठीक है,
1: एक गाना लगा दिया।
0: हाँ बताओ बताओ,
1: गाना,
0: चलो एक गाना लगाता हूँ। ठीक है, ये लो। कुछ देर तो रुक जाओ बारिश के बहाने,

0: कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, कर लेंगे हम चार बातें, कुछ देर तो रुक जाओ। ओके जनाब, कुछ देर तो रुक जाओ, कर लेंगे हम दो चार बातें बरसात के बहाने। तो कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ कौन है, कहाँ से?
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं खुर्रम भाई?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, जन्नतुल मकामे दोज़ुकुल हरामी, कैफ हाल हबीबा? हकनवाज साबरी साहब, कैसे मिजाज है आपके?
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ।
0: क्या पकाया तो आज दाल माश पकाई?
1: मैं कहीं गया हुआ था।
0: अच्छा अच्छा, आज दाल माश पकाई है साबरी साहब?
1: नहीं, मैं ना वो ना क्या कहते हैं उसे, वो बैंगन बहुत शौक से खाता हूँ।
0: नहीं, काले मैले और आज दाल माश बनाई है हमने, मैले बनाया।
1: दाल माश भी अच्छी होती है अगर सही तरीके से बनाई जाए तो।
0: आपको पता, आपको पता काले मैले, काले मैलों का पता आपको?
1: काले मैले वो जो मोटी दाल होती है मसूर की?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, काले मैले,
1: काले मैले। पहले बताओ किसको कहते हैं?
0: बताऊं?
1: हाँ
0: बताऊं, कहते हैं बैंगनों को।
1: बैंगनों को बताऊं कहते हैं?
0: हाँ।
1: तो उस दिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया था?
0: कब नहीं बताया था?
1: ये पिछले ईयर की बात है।
0: अच्छा, तो आपने मुझे कहा कि मैं बताऊं, मैं समझ रहा था आप मुझे बताएंगे, मैं तो बताऊं तो मैं वो समझ रहा था कि आप मुझे बताएंगे। मुझे क्या पता था कि आप बताऊं के बारे में बात कर रहे हैं।
1: आपने पूछा था बहनों को क्या कहते थे, मैंने क्या बताऊं?
0: आपने कहा बताऊं, मैं आपको कहता रहा बताएं बताएं बताएं, आप फिर कहते रहे बताऊं। मुझे क्या पता क्या बहनों
1: को? वो पता है क्या खुर्रम भाई, एक दफा ना वो टिकटॉक बड़ी वायरल हुई थी, वो ना एक बंदा
0: दूसरी दफा वायरल,
1: वो अपने हाथ में ना माल्टा पकड़ के कहता है ना किन्नू वाला, वो कहता है इनू के कहने ने, वो कहता किन्नू, कहना इनू के कहने, कहना किन्नू, फिर कहना इनू के कहने ने, वो कहता यार किन्नू कहने रे किन्नू। ये वही आपकी बात होगी कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि बैंगनों को बताऊं कहते हैं तो आपको समझ ही नहीं आ रही थी।
0: बस ना समझ हो गया हूँ मैं बहुत। चलो भाई बताओ, बताओ फिर मुझे कि क्या बताने आए हो।
1: मैं आपके टॉपिक के हवाले से कुछ बात करूंगा कि मुझे तो हालात ने बहुत ज्यादा तब्दील कर दिए। वो उसका रीजन ये है कि पहले मैं शीशे का एक रुख देखता था, अब मुझे दोनों साइडें नजर आ रही हैं शीशे की।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ओके।
1: और जैसा कि अभी हमारे सारे मोहतरम जनाबे हमीद कुल साहब कह गए हैं ना कि सूद के समेत हम जो है ना अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, तो बिल्कुल उन्होंने 100% बात की है, मैं इस बात पे एग्री हूँ।
0: चले ठीक है, एग्री रहना, डिसएग्री नहीं करना, ठीक है?
1: नहीं, मैंने गलत बात की है।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल इस बात पे एग्री रहना, ठीक है?
1: जाने की क्यों बात कर रहे हैं? आप कॉल क्यों ड्रॉप कर देते हैं मेरी इतनी जल्दी?
0: बिल्कुल भी नहीं, वक्त बहुत कम रह चुका है, 1:40 हुए। थैंक यू मेरे भाई,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हमेशा कॉल करते रहा करो, जल्दी कॉल किया करना यार, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, नेक्स्ट टाइम आपने कॉल करनी है तो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है?
0: मैं ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसी हैं?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पिछले जुम्मे को आपने मुझे जो वजीफा बताया था ना कि चुट करके बैठने और एक ग्लास पानी पीने गुस्से का, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मेरे हस्बैंड मुझसे कोई बात पूछे तो फिर अभी से जवाब कैसे देना है? जरा इस पे रोशनी डाले ना।
0: हाँ, रोशनी डालने से पहले ना एक चीज पे बड़ी रोशनी डालने की जरूरत है वैसे। जब आप कॉल करें ना रेडियो पे तो दो चीजों का बड़ा ख्याल रखें।
2: क्या?
0: एक अपने फोन को अपनी सांसों से दूर रखें और दूसरा जो है ना वो छुप के बात ना किया करें, बुरी बात होती है। मेरी 40 साल की बहन, मैं अभी लगाता हूँ, ठीक है? बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।

Люди Егана. आज मुझे लग रहा है मैं राय अशरफ साहब बन गया हूँ। वो ऐसे गाने लगाया करते थे।

कॉलर्स ने बिल्कुल परेशान नहीं होना जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अभी जो है वो मैं कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा जी, सबकी कॉल शामिल करूंगा, बिल्कुल परेशान

0: यार गाना तो अच्छा सा फरमाइश किया करो ना, फिर मैं लगाता हूँ फिर लोग बोर हो जाते हैं,
1: लोग कहते हैं यार ये की गाना लाया।
0: इसीलिए मैं फरमाइशें पूरी नहीं करता ना, लेकिन आपने छुप के कॉल की थी ना, इसलिए मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। चलो जी कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, ओके ये भी ड्रॉप हो गए, नेक्स्ट कॉलर लेंगे जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम।
2: माजरत के साथ परवेज आपको दबा, यकीन करें इतनी प्यारी बारिश हो रही है ना माशाल्लाह।
0: हाँ जी परवेज साहब, मैं किसी और को मौका दे दूं, बहुत कॉलें आ रही हैं, बहुत कॉलें आ रही हैं, मैं किसी और को मौका दे दूं, बहुत सारे कॉलर।
2: मेरी जिंदगी सर ऐसे चेंज हुई कि मैं देखता रहता हूँ आसमान है ना आसमान, बगैर किसी स्पोर्ट के अल्लाह ताला ने इसको खड़ा कर दिया, इसके कुछ छह आसमान और है और अभी बारिश हो रही है, इसमें बारिश बरसाने में किसी इंसान का हाथ नहीं है। इंसान अपने दिल को साफ कर ले तो बहुत कुछ सीख सकता है और चेंजिंग आ ही जाती है सर।
0: चलो बहुत,
2: और मौत को कसरत से याद करने से, सब सुनने वालों को सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया, मैं मशकूर हूँ आपका मोहतरम। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने तो सोचा था शायद दूसरी बार कह तो दिया और हमने आप आए जरूर आए, पर ये क्या हो गया मेरे साथ।
0: अच्छा
3: लेकिन शुक्र
0: चले।
3: और
0: अनिला वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, वक्त बहुत कम है।
3: नजीर भाई आप परेशान ना हो, इनको सब पता होता है, इनको आपका पता है, बाकी आपके साथ जोक कर रहे होते हैं इनको सबके नाम पता होता
0: है। चलो बस आपने ऐसा ही समझना नजीर साहब, मैं मजाक कर रहा होता हूँ, ठीक है ऐसा ही समझना आपने, ठीक है आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि मैं हकीकत में आपका नाम भूल जाता हूँ, ये आपने बिल्कुल नहीं समझना, ठीक है
3: बिल्कुल नहीं समझना। ये बादाम साथ नहीं, ये 11-11 बादाम खाते हैं
0: जी बिल्कुल।
3: अच्छा मैं ये कहूंगी कि टॉपिक जो इस वक्त है उसमें ये कि मेरे साथ मेरी शादी के बाद काफी मुझे,
0: बस अनिला अगली दफा सुनूंगा, बस ना अनिला अगली दफा सुनूंगा, ठीक है।
3: अच्छा देखा मेरे साथ ऐसे ही किया करो आप,
0: देखे आपकी कॉल,
3: एक तो मेरी कॉल देर से मिलती है, ऊपर से जल्दी जल्दी टाइम
0: देखो लग गई ना, लग गई ना कॉल।
3: ये चेंज मुझे लाइफ में आया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलना था और मिला, और मैं बड़ी सियाणी हूँ।
0: चलो बाय बाय, थैंक यू। शामीर अली है मेरे साथ जी, और कहते हैं जी कि मैं जो है वो लाहौर से हूँ और प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और सहर है मेरे साथ जी लाहौर से, वो भी प्रोग्राम सुन रही हैं और कहती हैं कि खुर्रम भाई कैसे हैं आप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, फ़नी फ़नी सी, खुश रहा करें हमेशा। और अरीबा आप ही कॉल नहीं कर रही, नाराज़ हैं आपसे क्या? नहीं अरीबा के पास बैलेंस नहीं है आजकल, शहर उसका बैलेंस जो है वो ख़त्म हो गया, तो कहती हैं उज़ैफा भाई की कॉल पर बहुत हंसी आई मुझे। सायमा सिद्दीकी कहती हैं नाइस पिक्चर डियर, थैंक यू सायमा।
4: दिल के ये अफसाने कोई मुझको भी सुनाने, आ जाए मेरी बाहों में।
0: शामीर ने जो है वो एक गाने की फरमाइश की है, तो शामीर में गाना नहीं चला सकता यार अभी, वक्त बहुत कम है, 12 मिनट हैं और कुछ कॉलर्स मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मिशाल क्या हाल है? अच्छा पता है कभी ऐसा होता था ना जब हम स्कूल जब जाया करते थे, जब सुबह सुबह बारिश लग जाती थी और लेट हो जाते थे, तो वो हमें हमें हमारी एक मिस हुआ करती थी ना, मिस नाजिश उनका नाम हुआ करता था, वो साइड पे खड़ा कर देती थी और कहती थी कि बताओ क्यों लेट आए हो, बताओ वजह क्या थी लेट आने। हम कहते थे बार बार कि मैडम बारिश थी, कीचड़ था। अच्छा ये साथ वाले बच्चे इनके लिए बारिश नहीं थी, तुम्हारे लिए बारिश थी सर हैं? तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मिशाल क्यों लेट आई हो, प्रोग्राम के आखिर में क्यों आई हो? चलो शाबाश बताओ।
3: ना ना ना मैं बहुत देर से कॉल कर रही थी, बट मिली अभी है, तो मैं सोच रही थी बाहर जाओ की बारिश हो रही है, कोई बारिश नहीं हो रही,

0: ona ki acha sade mein le liye aur ye
1: acha
0: so ji
1: to mishal phir kya kehne aayi
0: main kuch bhi nahi main bas aapko call karne se aur mujhe pata hai ki bahut bahut kam aur mukabla par bahut sari calls aa rahi hongi
1: हाजिरी लगवाने हाजिरी लगवाने चले लग गई आजकल बड़े बड़ा गायब गायब रहती हो सब खैर है ना सब ठीक चल रहा है ना जिंदगी में
0: अल्हम्दुलिल्लाह
1: चलो चलो बस अल्लाह करे कि खैरियत का मामला रहे
0: आमीन आमीन आमीन
1: चलो ख्याल रखो मिशाल अपना बाबा ही टाटा

सोनिया जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही। सोनिया कहती है कि जी आप ये क्या 1980s के गाने जो है वो चला रहे हैं और मुझे सुना रहे हैं। सोनिया मेरे पास नहीं यही वाले हैं, इसी पे गुजारा करो। मैं गाने ढूंढने में ना बहुत बुरा हूँ।

Okay, Janab, it's time to go. It's time to say Allah Hafiz. It's time to say goodbye. Thank you so much, everybody. अगर आज आप अच्छा करते हैं और अच्छा अच्छा होता है, आप अच्छी नीयत रखते हैं, अच्छा काम करते हैं, हाल को खूबसूरत रखते हैं, हाल को अच्छा रखते हैं, तो माजी आपको खूबसूरत रहता है। फिर आपको जब यादें आती हैं इस हाल की, जब ये माजी बन जाता है, तो फिर आप मुस्कुराते हैं, आपको अच्छा लगता है। और जिंदगी कहीं भी किसी भी सूरत और किसी भी तरह से बदल सकती है, अच्छे में भी और बुरे में भी। अगर आपका सब अच्छा चल रहा है तो जरूर याद रखिए कि जिंदगी को बदलने में कुछ थोड़ी सी देर लगती है रब के यहाँ। एक मामूली सी चीज, एक मामूली सी गलती, एक मामूली सा लम्हा आपको बदल के रख देता है, पूरी की पूरी जिंदगी तब्दील करके रख देता है। तो हर वक्त रब कायनात से डरते रहिए और उससे खौफ खाते रहिए और उसके यहाँ जो है वो इस्तग़फ़ार करते रहिए कि या अल्लाह को गलती ऐसी सरजत ना कर देना कि ज़िंदगी को बदल देना, ऐसे बदल देना कि मैं सारी ज़िंदगी पछताऊँ, ऐसी कोई गलती मुझसे सरजत ना करवाना। और अगर ज़िंदगी मुश्किल गुजर रही है और आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी अच्छे में जब बदलती है तो कुछ एक लम्हा नहीं लगता। जब रब के यहाँ मंजूरी आती है ना, वहां पे जब अप्रूवल मिल जाता है ना, तो कायनात की सभी चीजें आपकी धारा में बहने लगती हैं। सब कुछ आपके मुताबिक होने लगता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जितने लोग मेरे साथ शामिल हाल रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पेशली जो लोग मेरे साथ जी साइलेंटली मुझे सुनते रहे और अपना फीडबैक जो है वो थ्रू कमेंट्स, थ्रू मैसेजेस पहुंचाते रहे, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू आमना सर्वर, स्पेशल थैंक्स टू निदा, और स्पेशल थैंक्स टू रूज फातिमा, स्पेशल थैंक्स टू सोनिया और बाबर, सोहा मेरे साथ रहीं, सानिया रहीं, कोमल रहीं, हादिया रहीं और हानिया रहीं, बिस्मा रहीं, बीनिश रहीं, इरम रहीं, सुमैरा रहीं, हुमैर खान मेरे साथ रहे, नादिम खान मेरे साथ रहे, आयत खान जिदून मेरे साथ रहीं, उज़्मा नाज मेरे साथ रहीं, बहुत शुक्रिया।

शामीर अली आपका बहुत शुक्रिया, तायरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया, सहर आपका बहुत शुक्रिया, साइमन सिद्दीकी और माजबी, ताहिर अजीज, मेरीना बिलाल, आयशा खान, हम्माद खान बहुत शुक्रिया, जनत सलीम, और इसके अलावा जी मेहर साहद मेरे साथ रहे जी, और सानिया आसिफ रही, ईमान मानो रही, फैसल अब्बास रहे और कोमल ईमान रही। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर जिंदगी ने वफा की, अगर सांसों ने वफा की, तो आपके साथ मुलाकात होगी अगले जुम्मे को। गलती को सहव सरजद हुआ हो तो माफी चाहता हूँ, किसी के कान को, किसी के दिल को कोई बात गिरान गुजरी हो तो माफी चाहता हूँ, जबकि हुजूर भी माफी का खासगार हूँ, आपके हुजूर भी माफी का खासगार हूँ, इंसान हूँ, खताकार हूँ, खता का पुतला हूँ, खताएं सरजद हो जाती हैं, माफ कीजिएगा, रब की सुन्नत है माफ करना, आप भी माफ कीजिएगा। मुझे के भी बुलाते हैं, और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं, प्रोग्राम के हवाले से कोई मौजू बताना चाहते हैं, प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, kb.big लिखेंगे मैं आपको मिल जाऊंगा, kb.big आप लिखेंगे मैं आपको, इंस्टाग्राम हैंडलर आपको मिल जाएगा। आपने मुझे कमेंट करके बताना है, आपने मुझे मैसेज करके बताना है, आपने मुझे इनबॉक्स करके बताना है कि जी कौन से मौजू के ऊपर आपको बात करना अच्छा लगता है, किस हवाले से बात की जाए, और प्रोग्राम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोग्राम में नहीं होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, सो आपने मुझे बताना है जी। इसी के साथ बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़ अल्लाह निगेबान कहना चाहता हूँ, ये भी आपको कहना चाहता है, साइन आउट, ये भी साइन आउट, बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़।

हम नगमा सरा कुछ गजलों के, हम सूरत गर कुछ ख्वाबों के, बेजज्बा शौक सुनाए क्या, कोई ख्वाब ना हो तो बताए क्या।

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकले और खुद उनके पीछे चले, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए।